नमस्कार, सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि तदनुसार आज दिनांक 28 मई 2026 ईस्वी, समय प्रातः के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा का आरंभ करते हैं इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आज गुरुवार है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम के स्वर में इस भक्ति रचना के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन है सृजनशीलता। वाचक स्वर है स्वामी अशोक भारती के।
1: देखिए, परमात्मा के इस सारे कायनात को हम देखें तो हमें एक चीज नजर आती है कि परमात्मा सतत सृजनशील है, नॉन स्टॉप 24 घंटे सृजन चल रहा है। उसका काम अरबों खरबों पता नहीं कितने वर्षों से है, लेकिन सृजन रुकता नहीं है। तो सृजन ही प्रेम और धर्म है। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, अपने घोड़े पर बैठकर हर दिन सुबह शहर में घूमता था। रोज का उसका नियम था। उसको बड़ा सुंदर अनुभव होता था यह देखने में कि कैसे मेरा शहर विकसित हो रहा है, कैसे उसकी राजधानी अधिक से अधिक सुंदर हो रही है। उस राजा का यह स्वप्न था कि उसे पृथ्वी की सबसे सुंदर जगह बनाया जाए उसकी राजधानी को। वह हमेशा अपने घोड़े को रोकता और एक बूढ़े व्यक्ति को देखता। उसका रोज का नियम था। उस बूढ़े की उम्र करीब करीब 120 वर्ष की थी, इतना वृद्ध था वह आदमी। तो राजा जब घूमने निकलता तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास, जो बगीचे में काम करता रहता, बीज बोता, वृक्षों को पानी देता, ऐसे वृक्ष जिनको बड़े होने में सैकड़ों साल लगेंगे, फिर भी उसकी रखवाली करता वो बूढ़ा व्यक्ति। उसे बड़ी हैरानी होती कि यह आदमी आधा कब्र में जा चुका है, 120 साल का हो गया है,

0: किसके लिए ये बीज बो रहा है? ये तो जाने वाला है। वो कभी भी इस वृक्ष पर आए हुए फल और फूलों को कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि वृक्षों को बनने में, ऊंचा होने में टाइम लगता है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपनी मेहनत का फल देख पाएगा। एक दिन वो बादशाह अपने को रोक नहीं पाया। रोज देखता उसको, वृद्ध व्यक्ति को बगीचे में सतत काम करते हुए, और काम करते हुए प्रसन्नता ये भी देखता। वो रोक नहीं पाया, अपने घोड़े से उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर वो पूछने लगा, बाबा मैं हर दिन यहां से गुजरता हूं और एक प्रश्न मेरे दिमाग में रोज आता है, अब यह असंभव हो गया मेरे लिए कि मैं आपके कार्य को क्षण भर बाधा पहुंचाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसके लिए ये बीज बो रहे हैं? ये वृक्ष जब तैयार होंगे, युवा होंगे, तब आप यहां नहीं होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सम्राट की तरफ देखा, हंसा और फिर बोला, यही तर्क अगर मेरे बाप दादाओं का होता तो मैं फल और फूलों से भरे इस सुंदर बगीचे से महरूम हो गया होता। मेरे बाप दादा भी यही सोचते कि हमें क्या करना है। तो आज ये जो वृक्ष बगीचा मेरे सामने लहलाता है, इससे मैं महरूम हो गया होता। हमारा पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माली है। मेरे पिता बाप दादाओं ने जो बीज बोए उसके फल मैं खा रहा हूं, और मेरे बच्चों के बाद बच्चों का क्या हो गया, इसकी रखवाली, इसकी सुविधा मैं जुटा रहा हूं। लोग मेरे बगीचे को दूर दूर से देखने आते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे वृक्ष है जो हजारों साल पुराने हैं, और मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं कृतज्ञता से कर सकता हूं, धन्यवाद से कर सकता हूं। माली कहता सम्राट से, जहां तक बात बीज बोने की है, जब बसंत आता है और जब बसंत आने के बाद पत्ते उगते देखकर मुझे इतना आनंद आता है कि मैं भूल ही जाता हूं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं। उस सृजनशीलता में मुझे इतना आनंद आता है एक पत्ते को खिलते देखकर।
1: श्रोतों, अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन था सृजनशीलता। वाचक स्वर थे स्वामी अशोक भारती के। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती हर वास्ते। जानकारी का विषय होगा नवजात बछड़ों की देखभाल। इसके अलावा आप सुन पाएंगे लोक भजन। प्रातः 7:20 पर कार्यक्रम मानस कान में आज आप सुनेंगे भाग संख्या 257। सुप्रभात, आप सुना करते हैं हमारे केंद्र से प्रत्येक सुबह

30 मिनट पर। आज जानकारी के विषय होंगे जल का महत्व, आलस्य का नुकसान और हर भोर कुछ कहती है। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से प्रातः 8:45 पर, दोपहर 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। 9:10 पर कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार होंगी चंपा मेथी व साथी। 9:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से सुबह 9:30 पर, दिन में 11:00, दोपहर 2:30 पर और शाम 7:45 पर। आज प्रातः 10:00 आप सुन पाएंगे आपके फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत।

0: दोपहर 12:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान। आज जानकारी का विषय होगा डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें। दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज चर्चा के विषय होंगे सीखने की उम्र नहीं होती, बच्चों के साथ कूल एक्टिविटीज़, पौष्टिक भोजन का महत्व और ब्यूटी टिप्स। दोपहर 3 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम उर्दू सर्विस और 4 बजे कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर। संध्या 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। जानकारी के विषय होंगे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, हमारी संस्कृति, हमारा अभिमान, राष्ट्रीय एकता और आज का इतिहास। संध्या 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सिरैकी। संध्या 7 बजे ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आज चर्चा के विषय होंगे राजस्थान की लोक कला, यातायात के नियमों की पालना करें, धान की उन्नत किस्में, इसके अलावा उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी आपको दी जाएगी। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रांतीय नाटक और 10:30 पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। आज की हमारी ये सभा संपन्न होगी रात्रि 11:10 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षी

0: बलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य पञ्चदशं राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य तृतीयं राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,2000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल

0: तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती हर वास्ते। जानकारी का विषय था नवजात बछड़ों की देखभाल। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोतों लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक वचन। आज कलाकार हैं भंवर लाल और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन, आज कलाकार थे भंवरलाल और साथी। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मानस गान में भाग संख्या 257।

विलाप करती सीता को रावण अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरिशृंग पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहां क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सूना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में परास्त होकर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान में भाग संख्या 257। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.72 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.11 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात में आज जानकारी के विषय हैं जल का महत्व, आलस्य से होने वाले नुकसान और हर भोर कुछ बोलती है। श्रोतों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस विषय के साथ कि जल का महत्व। श्रोतों जल ही जीवन है, इसका अर्थ है कि जहां पानी होता है वहां जीवन होता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। जल हमें प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के जीवन में जल का बड़ा ही महत्व है और बिना जल के जीवन भी असंभव है। श्रोतों इस विषय पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में फिल्म शोर का ये गीत।

श्रोतों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 70% भाग पर जल विद्यमान है और यह जल महासागरों और सागरों में वितरित है। पानी का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी उपलब्धता में भी कमी होती जा रही है। इसलिए पानी को बचाना और संरक्षित करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें जल का उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। नहाने, साफ सफाई करने तथा जल को व्यर्थ में बहाने से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल के महत्व के बारे में सभी को जागरूक करना चाहिए।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं आलस्य से होने वाले नुकसानों पर। श्रोताओं, मनुष्य जीवन में आलस्य एक ऐसी आदत है जिससे मनुष्य का शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है। आलस्य से समय की बर्बादी, अवसरों का नुकसान, काम में असफलता और गंभीर समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित होती हैं। आलसी व्यक्ति हमेशा काम को कल पर टालता है और लगातार टालम टोल करने से बहुत सी महत्वपूर्ण सफलताएं उसके हाथ से निकल जाती है। श्रोताओं, इस विषय पर और भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अवतार का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आलस्य से होने वाले नुकसान पर। श्रोताओं, आलस्य के कारण व्यक्ति शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है और लगातार सक्रिय नहीं रहने से मोटापा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। श्रोताओं, जितना अधिक हम आलस करेंगे हमारा शरीर उतना ही कम ऊर्जा का उत्पादन करेगा और हम खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है जिससे हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में आलस्य को पूर्ण रूप से त्याग कर पूरे जोश और जुनून के साथ अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। श्रोताओं, लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है नीलकमल। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं हर भोर कुछ बोलती है विषय पर। श्रोताओं, इस बात का मतलब है कि हर सुबह अपने साथ एक नया संदेश, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आती है। यह पंक्ति प्रकृति की सुंदरता और जीवन में सकारात्मकता को दर्शाती है। प्रत्येक सुबह हमें मेहनत और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर नया दिन नई संभावनाएं लेकर आता है। श्रोताओं, लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।
1: तो हम चलते हैं।

0: श्रोताओं, तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए

0: लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं

0: युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवे, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया।

0: उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तनसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निजाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट की इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकाम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम

0: के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकाम को यह हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वज़ारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को यह इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वह जराइम और मुनशियात की स्मगलिंग के जराए तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा न हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदाम के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेठवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा तीन लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और सोला और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर, माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इत्तला नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अज़हा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वज़ी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार मुल्क के शहरियों को खासतौर पर माली तौर पर कमजोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने आवाम से माशरे में मोहब्बत और इत्तेफाक को फरोग देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशुसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: لوگ نزدیکی مساجد میں عید الاضحیٰ کی خصوصی نماز ادا کر رہے ہیں. فریضہ قربانی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا. ریاستی سرکار نے کسی بھی نئی روایت کے شروع نہ ہونے اور ممنوع جانوروں کی قربانی نہ ہونے دینے کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے. ڈی جی پی راجیو کرشن کی ہدایات کے

0: बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हसास शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, जबरदस्त नज्म व जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। एसएसपी सतह के अफसर की क्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम सांची स्तूबा के मुकदस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोदगलियाना से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात आवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़राअत मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दो रोज़ा प्रोग्राम में ज़राअत और मुतालिक शोबों से मुतालिक मौजूआती तबादला ख्याल, रियासतवार शराकत, ग्रुप गौरखौस जैसे अहम मामलात शामिल होंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार ज़राअत, पैदावार में इजाफा, आबोहवा में लचक है, बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और किसानों की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज करते हुए आने वाले खरीफ सीजन से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर खौस किया जाएगा। वजारत ने मजीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारों, ICAR, ज़रई इदारों और दीगर मुतालिका फरीकों को खरीफ सीजन के लिए मरबूत कार्रवाई और कलीदी तरजीहात पर तबादला ख्याल के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि मरकजी और शिमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आज शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज तेज से बहुत तेज बारिश की भी पेशगोई की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भारत बांग्लादेश सरहद पर चौकियां बनाने और खारदार बाड़ लगाने के बुनियादी ढांचे के क्याम के लिए 142.79 एकड़ आराजी BSF के हवाले कर दी है। यह हवालगी BJP हुकूमत के इस फैसले का हिस्सा है जो 11 मई को काबीना की पहली मीटिंग में किया गया था, जिसमें सरहद पर बाड़ लगाने और मुतालिका बुनियादी ढांचे के मनसूबों के लिए 45 दिन के अंदर अंदर 600 एकड़ जमीन की मुंतकली की गई थी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कोएम्ट एडुटेक को इम्तहानात की कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतालिक इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने कहा कि इल्जामात गलत, गुमराहकुन और हकायक पर मबनी नहीं हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर्स और दो गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कैर्सलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डी गोकेश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रगनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजिया से पीछे हैं जो 7.5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफ्रीका और अब अखबारात के आईने के साथ है नितिका।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने SIR पर

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं जानी बाबू।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत भजन। आज कलाकार थे जानी बाबू। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ये आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ईद उल अजहा आज देश

0: के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने सभी नागरिकों से त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी त्यौहार का उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्यौहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5 शहरों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां आम नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहे हैं।
1: भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। गर्मी के इस दौर में शीतल पेय और खाद्य पदार्थों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भरतपुर में भी बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में अघोषित कर्फ्यू देखा जा रहा है। जैसलमेर में प्रचंड गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी जनजीवन को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलना शुरू होगा। कल से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इधर राज्य सरकार भीषण गर्मी में आमजन, विशेषकर राहगीरों और मूक पशु पक्षियों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु पक्षियों को तेज

0: कर्मी और लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कल शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दाने और पानी के लिए परिंडे बांधे। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज CSR कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होने वाली इस कार्यशाला में औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला के माध्यम से इन इकाइयों और संस्थाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। करौली में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पौधरोपण, गौ पूजन और रणगमा ताल पर दीपदान किया गया। जैसलमेर में स्वच्छता संरक्षण और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए और पेयजल स्रोतों की साफ सफाई कराई गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम अंतिम ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9:10 और 50 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मोरमंगल। आज कलाकार हैं चंपा मैथी और उनके साथी।

श्रोताओं, कार्यक्रम मरुमंगल आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं चंपा मैथी और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार थी चंपा मैथी और साथी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:30:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ युगल गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हीरो नंबर 1 के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं साधना सरगम और विनोद राठौड़ की। इस गीत को लिखा है समीर ने और सुरों में ढाला है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम था छुपा रुस्तम। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म बेटा से ये गीत। आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की। गीत समीर का है और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: $1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?

0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतों, लीजिए सुनिए फिल्म गदर से ये गीत। आवाजें हैं प्रीति उत्तम और उदित नारायण की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। वीडियो वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ जोन AIR पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपके फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मेरी जंग के इस गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, पसंद आप सबकी। गांव बांडीवाला फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवानकर, निर्मला विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुहेकर। गांव लोडगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन। गांव गमंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु ढोकिया, ईवा धारणिया। गांव बागसर पीलीबंगा से मोनू गोड, अनिल गोड, सुमन, रंजीत, मुकेश, ममता, धर्मवीर और उनके परिवार के सदस्य। अनूपगढ़ से ही इस गीत के फरमाइश करता हैं जुगल किशोर ढालिया, मनोहरी देवी, मनोज ढालिया, गंगा, सरस्वती, पूनम, पीकू, नव्या और राजकुमार ढालिया। बड़ोपल और सूरतगढ़ से शैलेंद्र सिंह छिंदा, केवल कृष्ण मिस्त्री और विनोद मंगलाव। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म मेरी जंग से ये गीत।

हमारे अगले गीत के फरमाइश करता है रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, गांव खोकरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां और जिशान खां, चंडीगढ़ से इस गीत के फरमाइश करते हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सुहाग का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म राजा और रंग से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और पसंद आप सबकी। गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत। सादुल शहर राजस्थान से रुत्वा गोयल, ध्रुवित गोयल और उनके मम्मी पापा। मंडी गोलवाला से ब्रिजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। इसी गीत के फरमाइश करता हैं खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव और एस के खुराना। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म राजा और रंक का ये गीत।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक फूल दो माली से। गीत इस गीत को आवाज दी है मनाडे ने, पसंद आप सबकी। विरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमीला और परवीन सुल्ताना, फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल विशु लाडी खेड़ा और शालनी खेड़ा, मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा, चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सरोजीत सिंह जोसन, सरोजीत कौर जोसन गुरमन, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनित कुमार और सोनम वर्मा, गांव कल्याण मलका जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सिंह सचनूर और मनिंदर, गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप चिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया, अलीका डव्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत और रानी सोनू रजनी। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।

0: श्रोतों लीजिए, सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को। फिल्म का नाम है जोनी मेरा नाम, पसंद आप सबकी। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, हरविंदर मान और कुलविंदर कौर, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर, संगीता, साक्षी, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्य, गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा, गांव हिपर सोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ श्री हनुमानगढ़ से वैद मिडा, अलका मिडा, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुना और दानिश आसिफ शेख, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्ध कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, किड़ूराम जोया और हनुमान सहारण, सेक्टर 67 माहौली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म जोनी मेरा नाम का ये प्यारा सा गीत।
1: जानी, आपको ज्यादा पसंद है।

श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। पसंद आप सबकी। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, दौलत राम वर्मा, बिंदा टेलर, सुभाष कुकड़, तेजवान कुकड़, सुरेश कुकड़, हीरालाल गजरा, ओम प्रकाश आहूजा, अवतार फूल, अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा। गांव सात एस किकरावाली से बलवंत राम, हंसनाथ, भालूराम, मदनलाल काटपाल, धर्मपाल चोपड़ा, विद्या देवी चोपड़ा और रुद्र बाबा। गांव 32 बीबी से रोशनी देवी, शीशपाल, सनी, चक 18 एच लॉटरी, केसरी सिंहपुर से गुरबचन सिंह भट्टी, चक धनजातिया केसरी सिंहपुर से ही इस गीत की फरमाइश करते हैं भगन दास

माफ कीजिए, भगवान दास चौहान। गांव डोवी से रघुवीर सिंह, अजयपाल सिंह, शक्ति सिंह, गुरदीप शेरगिल और चंद सिंह सरा। गांव 8S ढाणी से बाबूलाल सुभाष झाझड़िया, मंगलनाथ लालचंद और कृष्णलाल चावड़िया। बुर्जवाल श्री करणपुर से गुरदेव सिंह बराड़, तजेंद्र सिंह बराड़, इकबाल सिंह शेखो और लता सूर्यवंशी। चक 11O से शामिंदर सिंह संधू, उदयवीर सिंह संधू और सुखमन ज्योत संधू। आप सबकी फरमाइश पर

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है झुक गया आसमां, पसंद आप सबकी। ज्वारनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना, हिमानी और शिवम जाखड़। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़ और कपिल देव और हिमानी जाखड़। सूर्यनगरी जोधपुर से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, स्क्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। सिद्धार्थनगर दयारपुर बालभी से गजानन येल्ले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येल्ले। चक पांच एमडी पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागल। कासम कॉलोनी सनावत से यूसुफ खत्री, शफी, इदरीश, नूरू मीना और इरफान मीना, और इनके साथ हैं कासिफ मीना। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म झुक गया आसमां का ये गीत।

श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है नीला आकाश। पसंद आप सबकी। गणेश चौक रातनाड़ा जोधपुर से नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, अरविंद और सरोज भाटी। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र श्री शाह। मुंगिसापुर से मोहम्मद साकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद नसीब और पलक लुबना और यंश मंसूरी। भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, किन्नू, अक्षय, महावीर लोहरा और उनके परिवार के सदस्य। मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और हबीबुर रहमान। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीषा पंवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म नीला आकाश का ये गीत।

श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है आसपास, पसंद आप सबकी। शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधन खुराना, सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, रामपुरा मटोरिया से मुरारी लाल, अमन, रमन, तनीषा, सीताराम, मदनलाल शर्मा, पंकज शर्मा और उनके परिवार के सदस्य, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश और नियति कुमारी, करणवीर हाउस भूचो केंचा बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत, झोरड़ रानी बहलोल नगर से नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश, गौरव, पुनीत, पुनीता और आरवी झोरड़, वड़िंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, नायावाला जिला हनुमानगढ़ से डॉक्टर गौरव कंडियारा और मनु कंडियारा, लखूवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, सौरव, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या और मोहम्मद रफीक, संगरिया से मुकनाराम और महावीर लोहरा। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आसपास का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म अप्रैल फूल से ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। इस गीत के फरमाइश करता है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। भोपालगढ़ जिला जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित सिंह चौधरी। ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां और उनके परिवार के सदस्य।

श्रोताओं, फिल्म अप्रैल फूल के इस गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत संपन्न करने की अपने दोस्त मनोज खत्री को दे इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओ, इस समय आपने अपने रेडियो सेट में ट्यून कर रखा है आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। आइए अब सुने क्रांति फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओ, अभी आपने क्रांति फिल्म में नितिन मुकेश के साथ लता की आवाज़ें सुनी। गीत संतोष आनंद का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस समय फिल्मी नगमे प्रसारित किए जा रहे हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से आप सुन रहे हैं फिल्म संगी। समय मिलाइए हमारे स्टूडियो की घड़ी में, समय 11:30 और 7 सेकंड हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम का अगला नगमा।

श्रोताओ, तो अभी आपने किशोर कुमार की आवाज़ सुनी। फिल्म का नाम था जूली, गीत आनंद बख्शी का था और संगीत राजेश रोशन का। इस समय आप ये फिल्मी नगमे आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

श्रोताओ, अभी आपने रोटी फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना। आइए सुने कार्यक्रम का अगला नगमा।

फिल्म का नाम है फूल और कांटे। आवाज़ें हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की। गीत समीर ने लिखा और संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोताओं, आइए सुने फिल्म संगीत कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ें। फिल्म का नाम है हंसते जख्म।

श्रोताओं, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय ठीक 12 बजे हैं। अब हम आपको

जानकारी दे रहे हैं हमारी आज की इस सभा की शेष और संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद ठीक 12:05 पर आप सुनेंगी कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में चंदन दास की गाई चंद गजलें। 12:50 पर किसान भाई सुना करते हैं अपना दैनिक कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे डेयरी फॉर्म की शुरुआत कैसे करें। 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दिन में 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा और आज महिला जगत में स्टूडियो से हमारी मेजबान रहेगी हर्षिता अरोड़ा। दिन में 2:00 आप सुनते हैं अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार। दोपहर बाद 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस के प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्डर, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज के इतिहास के बारे में जानकारी, प्रदूषण पर बातचीत और राष्ट्रीय एकता पर भी बातचीत के माध्यम से हमारे प्रस्तोता आपसे बातचीत करेंगे। संध्या 6:05 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सहराई की। संध्या 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। इसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करते हैं।

संध्या 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर प्रादेशिक समाचार राजस्थानी भाषा में, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे। संध्या 7 ग्रामीण परिवारों का कार्यक्रम होता है चौपाल। 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात्रि 8 एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जाएगा। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 अंग्रेजी में समाचार, ये सभी आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 और 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम प्रसारित होंगे।

आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से अभी कार्यक्रम विवरण प्रसारित किया गया। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 12:05 हो चुके हैं।

0: कार्यक्रम प्रस्तुत है कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम के आप तमाम सुनने वालों को नमस्कार पहुंचे राजेश शर्मा की ओर से। श्रोताओ, कार्यक्रम का हमारा जो नाम है वो है कुछ बातें कुछ गीत, तो क्यों न हम बातचीत से ही आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करें। दोस्तों, कई बार हमारे जो सपने होते हैं या हमारे जो मन की बात होती है वो हम ठीक तरह से कह नहीं पाते। इसी वजह से हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो सफल नहीं हो पाते। इसलिए अपनी बात को सही समय पर सही शब्दों के साथ और सही जगह पर अगर हम करते हैं तो यकीन मानिए आपके सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। हाँ, हमारे मन में बहुत सी बातें होती है जो हम कहते कहते रह जाते हैं, इसलिए अपने मन की बात जहाँ भी आपको लगे वो करनी चाहिए। कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। बात ना करने से हमारे मन में अगर कुछ रह जाए तो बस हमें प्रायश्चित के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। बात चीत करते रहिए।
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम, तुम।
1: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा, मैं कहती हूँ

चलिए साहब, हम कर रहे थे बातचीत की बात, और कई बार हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ शब्द, कुछ बात हो सकता है ऐसी निकल जाए जो सुनने में सामने वाले को ठीक ठाक ना लगे। हाँ, हो सकता है हम अपनी तरफ से उसे ठीक कह रहे हों। हाँ, अगर बातचीत के दौरान ऐसा हो जाता है कि कुछ शब्दों का ऐसा हेर फेर हो जाता है कि सामने वाले को ठीक ना लगे, तो उसका समाधान भी तो हमारे पास होता है जनाब।

चलिए साहब, बातचीत के दौरान अगर किसी तरह की भूल होती है तो उसके लिए क्षमा सबसे बेहतरीन समाधान होता है। बात करते हैं मौसम की। मौसम इस समय गर्मी का जो महीना है वो अपनी पराकाष्ठा पर है। ऐसे में हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, जैसे गर्मी से बचाव के लिए अपने सर को ढक के रखना, घर से बाहर निकलते समय पानी का उपयोग करना या सही समय पर खाने का उपयोग करना। कुदरत का ये जो गर्मी का मौसम है ये हमें परेशान करता है, इससे बचाव हमें करना होगा। बचाव के बहुत से साधन होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, और हमारी जो धरती है इस समय हरी भरी नहीं है, बहुत से इलाकों में है भी, ऐसी बात नहीं है, तो धरती पुकार रही है एक अच्छी खासी बरसात के लिए। तो हम भी दुआ करते हैं

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं, आप जो भी आपका लक्ष्य है उसमें निरंतरता बहुत जरूरी होती है। रोजाना आप चाहे थोड़े स्तर पर, छोटे स्तर से ही करें, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोजाना हमें कुछ ना कुछ करना होता है, तभी आपका जो लक्ष्य है वो मिल पाता है।

चलिए साहब, आप सफलता के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर अपने काम में लगे रहिए और कार्यक्रम से राजेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से अभी कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई चंद गजलें।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 12:50 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, बात करें आप पशुधन के बारे में, क्योंकि आप खेती पाती से जुड़ेड़ा हाँ और खेती पाती का सागे सागे की है कि आप पशुपालन भी करा। तो अब देखा नहीं तो पशुपालन को जो को आप बढ़िया तरीके से अगर बिंगो उपयोग करना है, बीच ज़्यादा मुनाफो लेना है, या फिर नया आधुनिक तरीके से अगर आप पशुपालन करा तो बिंगो ज़्यादा फायदों भी हुए। क्योंकि आप देखा नहीं कि पशुपालन जो को है वो खेती के साथ जुड़ेड़ो है और खेती जिकी है वह पशुपालन के साथ जुड़ेड़ी है। तो पशुपालन आप बेहतर तरीके से ये वास्ते भी कर सका क्योंकि आपने जो को खाद्यान्न जो को है पशुओं के लिए जो को हरियो चारो है आहार जो को है वो अपन खेती से प्राप्त हो जाए। लेकिन बंगो जो को बढ़िया तरीके से अगर आप रख रखाव करा, बंगो लालन पालन करा तो बीचों अपन की अगर ज़्यादा मुनाफा भी हुए और दुग्ध उत्पादन जो को है वो भी अपन बढ़िया हुए।

आधुनिक तरीके से अगर आप पशु पालन करा और बिंगो ज्यादा मुनाफा अगर आप लेना चाहवा तो बिंगे लिए अपन के करना है कि डेयरी जो को उद्योग है, डेयरी जो को व्यवसाय है वो बहुत बढ़िया है। बियन तो आपने जका किसान भाई लोग है गाँव में कई जगह डेयरी बना के रखे भी है, दूध जो को है वो भी बेचा बट्टी करे या फिर आसा पास भेड़ो करके जो को दूध है बोले आगे इस जगह भेड़ो करके और भी दूध ने भी बेच के अच्छा मुनाफा भी कमावे। लेकिन इनके अलावा भी आप डेयरी के माँ दूध के सागे सागे दूसरा जगह दुग्ध उत्पाद जगह है बे भी अपा तैयार करके अगर बेचा नहीं तो बीसू भी अपन मुनाफा हो सके। जी हाँ, अगर अपा डेयरी खोलांक आस पास है या फिर अपने घर गए माँ या फिर अपने जटे भी जगह है तो बिग माँ जी पनीर है या फिर घी है, मक्खन है, दही है, छाछ है और दूध तो भी अपा बेचे ही हाँ। लेकिन ये अगर चीज़ा जी दुग्ध के सागे सागे जी घी है, मक्खन है या फिर पनीर जो को बना के बेचा तो बिंगो ज़्यादा मुनाफा है भाई लोगों। भारत जो को है वो दुनिया को सबसे बड़ो दुग्ध उत्पादक देश मानी जाए और भारत में लगभग जी देखें तो गाय है, भैंस है, बकरी है या फिर ऊँटनी को जो को दूध है वो बड़े स्तर पर बिंगो उत्पादन करी जाए और उत्पादन करके और बिंगा अलग अलग उत्पाद तैयार करके और अलग अलग क्षेत्र में बिंगने बेच गए और आपने जो कहा भाई लोग है वे अच्छो मुनाफा भी कमाने ला रहे हैं। तो इनके लिए अपने के करना है कि बढ़िया तरीके से रख रखाव करना जरूरी है, बाकी नस्लों को जो को चुनाव है वो करना जरूरी है। सागे सागे अपन के करना है कि जकी नस्ल अपन ले गया वहाँ तो बा नस्ल जकी है बढ़िया होनी जरूरी है। बिया देखाने तो पूरे भारत का माँ विश्व की लगभग 55 सैकड़ा जकी भैंसियाँ हैं बे है और लगभग 32 सैकड़ा तक जकी गायें हैं बे पाली जाए और अपने जो किसान भाई लोग बे रख है और सबसे ज़्यादा देखाने तो आपने जो को राजस्थान है या फिर जो को उत्तर प्रदेश जो को क्षेत्र है बैठा अपने जो किसान भाई लोग है बे पशुपालन करें। इनके अलावा अपा मांस कहाँ के पशुपालन जो को है वो अतिरिक्त आय को भी एक साधन है क्योंकि फसल का मां अगर थोड़ा बहुत कोई कमी पूर्ति आपने दिखाई दे तो बीच चुकी है का अपनी जी की आमदनी है बा पशुपालन से या फिर बीच डेयरी से अपनी बढ़िया तरीके से चाल सके तो इन्हें एक सहायक धंधा के रूप में भी आप बढ़िया तरीके से कर सकें। और डेयरी जो को है वो अगर आपां खोलनी है घरे डेयरी जो को उद्योग है वो अगर तैयार करना है तो बिंग लिए अपन की बातंग ध्यान रखना जरूरी है कि जिसकी जानकारियां हैं बंगो ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, देखें तो डेयरी फार्म शुरू करने से पहले अपने इनकी जिसकी बारीकियां हैं वे जान लेनी जरूरी है क्योंकि बिना जानकारी कोई भी धंधो करा अपा कोई भी काम शुरू करा तो बिंग अपन क्या है कि एक तो मुनाफो कोनी होगा नहीं, एक अगर आप कोई बिना जानकारी से कोई धंधो शुरू कर बैठांगा तो वो धंधो जो है वो ज़्यादा फलीभूत भी कोनी होगा नहीं, बिंग नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहे। तो जानकारियाँ जिकी है वे होनी जरूरी है और इंगे सागे सागे बिंग माँ अगर आप थोड़ो बहुत हिस्सा पत्ती भी रखा नहीं तो ज़्यादा फायदा है क्योंकि अकेलो इंसान जो को है वो कई बार ज़्यादा घटक सौदा में आ जाए, दो जना तीन जना रल के भाई बंधु अगर वो डेयरी वाला जो को उद्योग जो को है धंधो जो को है वो शुरू करे तो भी माँ कि है कि आसा पास से अपने इन्हें बिनु दूध भेड़ो करना है या फिर पशुपालन कर ला रहे हाँ तो बिंग माँ भी ज़्यादा थोड़ी सी सहूलियत अपने जो की आसानी जो की है वह मिल जाए तो रल मिल के भी अपन डेयरी जो को है वो उद्योग जो को है वो आप चालू कर सकें और सरकार की तरफ से भी इन माँ की सहायता जिकी है वह दीजिए अनुदान जो को है वो दीजिए और इसी बहुत सी योजनाओं जिकी है वे अपने जिकी सरकार है वे देने ला रही है कि डेयरी फार्म जो को है वो अपने किसान भाई लोग है या फिर जो का अपने बेरोजगार जो का भाई लोग है वे खोल गए और आपको जो को व्यवसाय है वो कर सके आपको जो को जीवन यापन है वो बढ़िया तरीके से कर सके। तो इनके लिए अपन क्या करना है कि बढ़िया नस्ल की जिकी गायें है या फिर भैंसा जिकी है वे अपन ढूंढनी पड़ेगी वे लानी पड़ेगी खरीद फरोख्त करके लानी पड़ेगी। तो 50 एक जिकी गायें है इनके सागे 17 एक भैंसा जिकी है जी आप ले आवानी तो आपनों जो को उद्योग जो को है व्यवसाय जो को है वो बढ़िया तरीके से चल सके। गाय की नस्लों की बात करें तो गाय की नस्लों में जी साहीवाल है, गिर है, थार पारकर है, सिंधी है, राठी है या फिर HF क्रॉस जिकी है, जर्सी नस्ल की जिकी गायें है और भैंसा में जी मुर्रा जिकी नस्ल की भैंस है वह बहुत बढ़िया भैंस मानी जाए, नीली रावी जिकी भैंस है और मेहसाणा जी की भैंस है, बदावरी है, सूरती है, ये भैंसा की जिकी नस्ल हैं गायें की जिकी नस्ल हैं बहुत बढ़िया मानी जाए। और अपने अठाई क्षेत्र का मान जी हाँ गुजरात की जिकी थारपारकर अपने गिर नस्ल की जिकी गाय है वह बहुत बढ़िया दूध के लिए उत्पादन के लिए बढ़िया मानी जाए, थारपारकर की जिकी गाय है वह बहुत बढ़िया है, इनको जो दूध उत्पादन है वो भी बढ़िया है, पौष्टिकता जिकी दूध में वह भी बहुत बढ़िया है। तो ये जिकी नस्ल हैं आमू कोई भी अपन नस्ल जिकी है बा लेस का या फिर रड़म पड़म करके जिकी नस्ल हैं वे भी आप पाल्स का तो बिंगो जो को मुनाफा वो अपने ज़्यादा हो सके। भाई लोगों दुग्ध उत्पादन खातर भारतीय जिकी गोवंश में साहीवाल, गिर, सिंधी, राठी और थारपारकर जिकी नस्ल हैं वे अपने जो किसान भाई लोग अपने इन क्षेत्र का माँ जी हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करानी तो काफ़ी क्षेत्र का माँ काफ़ी रकबा

0: में पाण ला रहे हैं और अच्छो मुनाफा भी कमा ला रहे हैं। इनके अलावा एच एफ क्रॉस जो कि जर्सी नस्ल की जो गायें हैं बंगो जो को दूध है वो अपने मांस का उत्पादन जो है ज़्यादा हो सके, लेकिन दूध को जो गाढ़ोपन है वो थोड़ा सो खड़को कम हुए, लेकिन बढ़िया नस्ल है। ईशु भी अपना अपना जो डेयरी फार्म है वो चालू कर सकें, जर्सी नस्ल की जी गायें हैं भी अपना आस पास भी अपन मिल जाए, कोई ज़्यादा पीसो टक्को भी कौन लगे नहीं, तो अपना ये जी बढ़िया नस्लें हैं पाल सकें। और इंगे सागे सागे अपन के करना है कि कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या में के पशुधन अपन भेड़ो कौन करूँ, 5-10 जी गायें हैं वे भी अपन कर सकें, कम से कम अपन 10 गायें जी है या फिर भैंसा जी है भी रख सकें। इंगे सागे सागे बकरी पालन को जो व्यवसाय है दुग्ध उत्पादन भी अपन बीच ले सकें, क्योंकि बकरी पालन से दूध उत्पाद करके अपन डेयरी फार्म जो है वो खोल सकें, क्योंकि बकरी को जो को दूध है ना वो पौष्टिकता से भरपूर हुए, बीमा ऐसा बहुत सा पोषक तत्व हुए जका मानव शरीर के लिए बहुत बढ़िया मानी जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी शारीरिक कमियां जकी है वे दूर करने के लिए अपना जगह डॉक्टर जी है वे बकरी को दूध सुझावे कि बकरी को जो को दूध है वो बड़ो पौष्टिक हुए, और अगर आप डेयरी फार्म के तौर पर बकरी पालन करा तो अपन मुनाफा भी ज़्यादा हुए। और इशू की है कि अपना आस पास इनका जगह मार्केटिंग माना बाजार जो को माना वो भी अपन बड़ो आसानी से मिल सके, तो अपन डेयरी फार्म जो है वो जरूर शुरू करना चाहिए। और इनके लिए अपन बाड़ो जो को है पशु जो को बाड़ो है वो तैयार करना जरूरी है और बिंगी भी जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि जट्ठे भी अपना पशुपालन करना है तो बटे एक तो छायादार जिकी व्यवस्था है वह होनी जरूरी है। इनके सागे सागे बाड़ो जट्ठा बनाने ला रहे हाँ वो बाड़ो बढ़िया जगह बनाना जरूरी है, कादो कीचड़ है या फिर जटे कोई ज़्यादा घास फूस है कंकड़ है माटी है बट्ठे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सो जो को है वो आपने ऊंचो उठी जगह है जटे थोड़ी सी ढलान वाली हल्की फुल्की जगह है बट्ठा बनाना चाहिए, ताकि बरसात जैसी समस्या में कई बार पानी भेड़ो हो जाए तो भी सुखिए का आपने जो पशुधन है भी नुकसान ना हो, अगर बरसात हो भी जाए या फिर गली को मोहल्ला को जो पानी है आस पास को गाँव गुआड़ को जो पानी है वो अपने बाड़ा में ना आवे, तो ऊंची थां पर ऊंची जगह पर अपन बाड़ो बनाना चाहिए। और जट्ठा बाड़ो बनावा तो बट्ठा बढ़िया तरीके से साफ सफाई जी अब आप देखनी जरूरी है, बिना आस पास अपन पानी जी साफ सुथरी व्यवस्था है वह करनी जरूरी है, क्योंकि बिना पानी अपना पशुधन जो को है वो कौन राख सका नहीं, पानी नज़दीक सारा होना जरूरी है, पास से लियागे भी आप पानी भेड़ो करके अगर आप पशुधन ने पालना चाहो तो वो कौन कर सका नहीं। इंगे सागे सागे अपन के करना है कि अपना जगह अपशिष्ट पशुओं का है जो गोबर है या फिर मलमूत्र है बिन खपाने की भी जगह होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिए अपने एक अतिरिक्त जगह की जरूरत पड़ेगी, ढेरी करने की जरूरत पड़ेगी, बीच आप कंपोस्ट खाद तैयार करके अरबिंग आप अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकें। और इंगे सागे सागे अपन की है कि पशुधन को अपने टीकाकरण को भी ध्यान रखना है, बीमार रोग व्याधियां भी आने की संभावना हो रहा है, क्योंकि साधारण सी बात है स्वाभाविक सी बात है कि जटा आप पशुपालन करांगा बटे रोग व्याधियाँ जकी है वे अपने आप ही आ जाएगी, तो बिंग लिए अपना अपना जगह नजदीकी आस पास जगह डॉक्टर जी है बासू संपर्क रखना जरूरी है, बिंग टीकाकरण के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है, और अपना जगह नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर जटा पशुपालन केंद्र है बट्ठे कई बार छोटा मोटा सम्मेलन रखी जाए छोटा मोटा कार्यक्रम रखी जाए तो वह कार्यक्रमों में हम जाके भी अपन जानकारियां जी की है भी ले सकें, या फिर अपना आस पास कोई पशुपालक भाई है जो को पुराने टाइम से पशुपालन कर ला रहे है तो बीच भी अपन जानकारी जी की अब लेगी पशुपालन कर सकें, पशुओं जो को टीकाकरण की जानकारी है वह अपना जगह नजदीकी डॉक्टर जी है बासू ले सकें, तो ई त्रियाँ से आप पशुपालन जो है वो कर सकें, डेयरी फार्म से आप अतिरिक्त मुनाफा जो है वो आप ले सकें। पण अब हूँ खेत का नहीं चालू सा राम राम।
1: डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे करें, खेत खलिहान में किसान भाइयों अभी आपने इस विषय पर जानकारी प्राप्त की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई, बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। भरतपुर में कुम्हेर गेट स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। इस दौरान यहां मेला भी लगाया गया। डूंगरपुर में शहर में ईदगाह तक जुलूस निकाला गया और सामूहिक नमाज अदा की गई। इसी तरह भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित

0: सभी स्थानों पर ये त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा में अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र की कोई भी शंका अनसुलझी न रहे और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में ऑन स्क्रीन मार्किंग को लागू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में 1 से 30 जून तक बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान होटल, ढाबों, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल तथा अस्थायी बस्तियों में रह रहे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो आगामी जुलाई माह से 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रही है। किशनगढ़ को दिल्ली और नोएडा से जोड़ने वाली इन नई फ्लाइट्स के शुरू होने से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर और आसपास की बड़ी आबादी को बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा ने बताया कि 1 जुलाई से दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू होगी। ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसके अलावा 2 जुलाई से नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू की जाएगी। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। अजमेर जिले में आज एक स्कॉर्पियो में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। घटना बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव के पास हुई। इस घटना में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां, पत्नी और भांजी की मौत हो गई। चारों के शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह जले हुए मिले। हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जाँच जारी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान सूरज आग बरसा रहा है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा दिन का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। पिलानी में 47, जोधपुर में 46.6, जैसलमेर और चूरू में 46.4, कोटा में 45.4, बाड़मेर, फतेहपुर शेखावाटी में 45, अलवर में 44.8 और लूणकरणसर में 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दोपहर बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है महिला जगत कार्यक्रम। महिलाओं के लिए आज का कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हैं हर्षिता अरोड़ा।

सखियों, महिला जगत सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को हर्षिता चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज आप सभी के साथ विभिन्न विषयों पे बहुत सारी बातें करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारियाँ काम भी आएगी और जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे ये सभी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी जरूर सिद्ध होगी। तो सखियों, सीखना, सीखने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर रहती ही है और सीखना एक अपने आप में एक पॉजिटिव सोच है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान को सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि सीखना किसी भी उम्र में हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमें कोई बाध्यता नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है। यह एक ऐसी प्रेरणात्मक सोच है जो साबित करती है कि इच्छा शक्ति और लगन हो तो कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी पड़ाव पर कुछ नया सीख सकता है। सखियों, हम जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे जन्म में हम घर में अपने माता पिता, अपने बड़ों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, अपने अध्यापक से, अपने सहपाठियों से हम शिक्षा सीखते हैं, जीवन के अनुभवों को सीखते हैं और फिर आगे चलकर जो हमारी जॉब लगती है तो ये दुनिया हमें एक नया ही अनुभव सिखा देती है और साथ ही साथ जीवन जीने का तरीका भी हमें सिखा ही देती है। फिर हमारी शादी हो जाती है, हम नए घर में चले जाते हैं और ये जो नया घर होता है वो हर दिन, हर पल और हर घड़ी हमें कुछ ना कुछ नया ही सिखाता है। चाहे वो रसोई की पाक कला हो या फिर जीवन का कोई अनुभव हो, इस उतार चढ़ाव के जीवन में हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम अनुभव जरूर सीख लेते हैं। सखियों, हमारा जो जीवन है यानी महिलाओं का जो जीवन है वो जीवन के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ नया सिखाता है। पहले एक स्त्री बनके हम कुछ नया सीखते हैं, फिर एक पत्नी, बहू और फिर मातृत्व यानी माँ बनके हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। माँ बनने का जो सफ़र है उसमें ये नहीं होता कि हम अपने बच्चे को ही नया सिखा रहे हैं, हम बच्चे से भी बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि ये जो माँ बनने का सफ़र है ये भी हमारे लिए नया ही होता है। तो इसे हम जीवन के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सीखना एक निरंतर चलने की प्रक्रिया है, यह सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने 60, 70 या 80 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी की या नए हुनर सीखे। जीवन के हर मोड़ पर लोग गलतियां और सफलताएं हमें कुछ न कुछ नया सिखाते हैं। नई चीज़ें सीखने से दिमाग सक्रिय रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। सखियों, हम काम में और हमारे घर के जिम्मेदारियों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट, अपनी हैबिट्स को ही भूल जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी रुचि किस चीज़ में है, हमें किस चीज़ से खुशी मिल रही है, लेकिन हमको अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन रुचि को पहचानना होगा और इनसे नई नई चीज़ें भी सीखनी होगी। ये रुचि चाहे सिलाई हो, पेंटिंग हो या कोई पाक कला हो या फिर म्यूज़िक ही हो, डांस हो, कुछ भी हो, जो भी हमारी रुचि हमको पहचाननी है और उसको सीखनी है। तो सखियों, ये जो सीखना है वो हर उम्र में चलता है और इसी विषय पे हम आगे और भी आपके साथ चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और इसी के साथ सुन लेते हैं एक प्यारा सा नगमा और उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको अच्छा लगेगा।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

सखियों, हमको ये आदत बनानी चाहिए कि एक साथ सीखने के बजाय हमें छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जैसे कि अगर हम सब कुछ एक साथ सीख जाते हैं तो वो हमें याद भी नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक रेसिपी भी है वो पूरी एक साथ पढ़ ली तो हम भूल जाते हैं कि उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या थे, फर्स्टली स्टेप उसका क्या था, बाद में क्या डालना था। तो इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित करके फिर सीखना चाहिए। फिर अगर कोई चीज़ हमें बनानी है तो उसी तरीके से हमें बनानी चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा पढ़े और फिर थोड़ा थोड़ा वैसा वैसा उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। इससे जो हमारा काम भी ईजी होता है और साथ ही साथ वो परफेक्टली वो काम कर पाते हैं। अपनी दिनचर्या में से रोज कम से कम 15 से 30 मिनट का समय अभ्यास के लिए निकालें। सखियों, हम अक्सर सीखने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर कुछ नया सीखेंगे तो कहीं गलती ना हो जाए। इस डर से हम सीखते ही नहीं हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर नया सीखना चाहिए। इससे हमारी सोच पॉजिटिव होती है और हम क्रिएटिव बनते हैं। मतलब अगर हम कुछ भी अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी रुचि का काम करते हैं, तो इससे अपने आप ही हमें आत्मिक खुशी मिलती है और हमारी

0: जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि जो हम महिलाएं होती हैं ना, वो अपनी खुशी अपनी पसंद को सोचती ही नहीं है, और अगर सोच भी ले तो उसको अहमियत नहीं देती। लेकिन अगर हमें जीना है, हमें खुशी से जीना है, पॉजिटिव सोच के साथ अपना जीवन यापन करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए और अपनी रुचि को ये जीवन बनाना चाहिए, और हमें सीखने की जो प्रवृत्ति है वो अपनानी चाहिए। नया सीखने से या शिक्षा प्राप्त करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास आत्मसम्मान बढ़ता है। नई चीज़ें सीखने से हम में उत्साह आता है और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। सखियों, जीवन भर नया सीखते रहने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और याददाश्त मजबूत होती है। बदलते समय के साथ अपडेट रहने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के नए रास्ते भी खुलते हैं। सखियों, हमें अगर हम अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है, और ये आत्मविश्वास के जो ऊर्जा है वो बाकी सभी जो काम करने की जो हमें एनर्जी चाहिए वो एक मिनट में हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो वो काम करने का जो लेवल होता है उसकी जो स्पीड होती है वो अलग ही होती है, और जो काम करने का अंदाज है वो अपने आप में एक अलग ही होता है, और इससे हमारे काम बहुत जल्दी पूरे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ पूरे होते हैं। तो सखियों, उम्मीद करती होंगे जो सीखने की प्रवृत्ति है आप सभी को भी डालनी चाहिए, और सीखने के लिए कोई उम्र बाध्यता नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती। हमें हर उम्र में कुछ ना कुछ नया जीवन जरूर सिखाता है। ये ज़िंदगी अपने आप में ही बहुत बड़ी गुरु होती है, बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती है। तो ये जीवन और जीवन के जो अनुभव है हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो सखियों, फिर से हमारा मनोरंजन की तरफ चलते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।
1: Sun in the earth, sunflower. Bird in the air, rain. Eye within eye.

Whispers again.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सखियों, स्वस्थ भोजन एक संतुलित आहार है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने और बीमारियों के लिए बहुत जरूरी होता है। सखियों, आजकल का जो जीवन है वो भागदौड़ भरा जीवन है। हम ऑफिस से लेट आते हैं और रास्ते में हमको भूख लग जाती है और इसी बीच हम जंक फूड, फास्ट फूड ये सब चीज़ें ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने टिफ़िन में ही कुछ पौष्टिक आहार रखते हैं तो इससे हम आने वाली बीमारियों के खतरों से बच सकते हैं और ये जो आहार है वो हमें एनर्जी का प्रसार करता है। तो सखियों, हमारे लिए पौष्टिक भोजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पौष्टिक भोजन से हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। ताजी फल, हरी सब्जियां, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। सही मात्रा में पोषक तत्व लेने में मेटाबॉलिज्म सही रहता है और अवांछित चर्बी जमा नहीं होती, जिससे मोटापा नियंत्रित रहता है। आजकल हम सभी देखते हैं, कोई पौष्टिक भोजन नहीं लेता, कोई की दिनचर्या नियमित नहीं है, हम लेट नाइट तक काम करते हैं और उस लेट नाइट काम में हमें भूख लग जाती है, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वही खाना हम खा लेते हैं, देर सुबह उठते हैं और फटाफट से ऑफिस चले जाते हैं थोड़ा बहुत कुछ खा के ही, फिर हमको भूख लगती है, फिर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ये जो जंक फूड का जो हमारा कर्म हो गया है, बार बार हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और खाना डिलीवर करवा लेते हैं और वही खाना सेवन कर लेते हैं। ये जो खाना है कब बना, कब हमने खाया, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। कितने टाइम पहले बना हुआ होता है और हम कितने टाइम डिलीवर होने के भी कितने टाइम बाद उसको खा लेते हैं, इसका भी प्रॉपर क्रिटेरिया नहीं होता है। तो सखियों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स ये सब कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे जो चीज़ पौष्टिकता है वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती और जो ख़राब चीज़ें हैं वो पहुंच जाती है, इससे हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है और मोटापा अपने साथ साथ कई बीमारियों को भी ले आता है। तो सखियों, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए और हम अगर भूख लगे तो दाल मखाने फ्राई करके रख सकते हैं, रोस्ट दाल मखाने खा सकते हैं, मुरमुरा को भी रोस्ट करके रख सकते हैं, पीनट्स को रोस्ट करके रख सकते हैं और हम अपने ऑफिस में कुछ डिब्बे टाइप के रख सकते हैं और जब हमें भूख लगे तो हम कुछ खा सकते हैं, हम फ्रूट्स ले सकते हैं, ये सब हेल्दी होते हैं, इसमें मिनरल्स फाइबर्स होते हैं जो हमारे शरीर को, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं।

सकते हैं। विटामिन और खनिजों से भरपूर आहार तनाव को कम करता है, और यह सब जो बाहर का खाना होता है ना, उसमें कोई भी रस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, घर के खाने भी रस ही रस होता है, माँ का प्यार होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तो इस खाने को खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और अवसाद के लक्षणों में सुधार होता है। फाइबर से भरपूर भोजन पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। तो सखियों, हमें अपनी डाइट में पौष्टिक भोजन को शामिल करना चाहिए, ना कि जंक फूड और फास्ट फूड। हम सोचते हैं कि आज का युग है, जंक फूड खाने होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देना होता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम कि मंथली में वन टाइम इतना कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रेगुलरिटी नहीं बना सकते। यानी नियमितता के दौर में हम इसको नहीं अपना सकते, क्योंकि जो पौष्टिकता है वो तो पौष्टिक आहार में ही मिलती है। तो इसलिए कभी कभी, यानी कि महीने में एक आधी बार अगर हम जंक फूड लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको अपनी नियमितता नहीं बनानी है। हमें पौष्टिक भोजन को ही अपने डाइट में शामिल करना है। हमें सलाद का और सेवन करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है, नौतपा चल रहा है, तो इस मौसम में हमें पेय पदार्थों का विशेष ध्यान रखना है। हम घर से बाहर जाए तो एक बोतल में पानी, सादा पानी नहीं, ग्लूकोन डी साथ में मिक्स करके लेके जाए। अगर हमें रास्ते में कुछ खाना पीना है तो नारियल पानी पिए, गन्ने का जूस पिए। इस मौसम में जितनी ज़्यादा हो सके लिक्विड ले, यानी गन्ने का जूस, छाछ, दही, तरबूज का जूस, नारियल पानी, सिकंजी, इन सब का सेवन कीजिए। सलाद जरूर ले, तरबूज, खरबूजा, इनका भी सेवन करें। खीरा, जो कि जिसमें पानी बहुत कंटेंट करता है, वो सभी अगर हम सेवन करेंगे तो इससे हमें पौष्टिकता मिलेगी, और यही पौष्टिकता से हम हेल्दी रहेंगे। और इस गर्मी में इस पेय पदार्थों को पी के ही हम इस गर्मी से बच सकते हैं, हमारा बचाव हो सकता है। तो सखियों, ये सभी जानकारियाँ आप जरूर यूज़ कीजिए अपने रेगुलर लाइफ, अपने नियमितता में, अपने दिनचर्या में इन सभी को शामिल कीजिए। तो सखियों, बातें तो आपके साथ यूं ही हमारी चलती रहेगी, लेकिन सुनते हैं एक गीत।

सखियों, हमें हमारे डाइट में कुछ सुधार करके पौष्टिक आहार बना सकते हैं। प्रोटीन जटिल आवश्यक गुण होते हैं जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रोटीन जीवन के हर चरण में उचित वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दैनिक कैलोरी का लगभग 25% मूंग दाल और उड़द दाल जैसी दालें, राजमा और छोले में होता है। प्रोटीन से भरपूर विकल्पों में पनीर, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। वसा हमारे दैनिक कैलोरी का लगभग 15% प्रदान करती हैं और एक प्रमुख ऊर्जा के रूप में काम करते हैं। वसा स्रोतों में अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, जैतून और तिल का तेल, मक्खन और घी में वसा शामिल है। फाइबर अच्छे पाचन के लिए जरूरी है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करने में मदद करता है। स्वस्थ आहार में ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, नट्स शामिल हैं। सखियों, पानी के बिना तो जीवन ही अकल्पनीय है। तो पानी एक पोषण घटक है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो हमें हर दिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए और इस गर्मी को देखते हुए हमें पानी जरूर पीना चाहिए। यानी हम कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं, पानी के सब्स्टिट्यूट है। अगर हम इतना पानी नहीं भा रहा है तो हम जूस, छाछ, शरबत, इस तरह से है नारियल पानी, शिकंजी, बील का शरबत, ये सब लेके हम अपने पानी की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन हमें पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में कभी डिहाइड्रेशन ना हो। हमें समय समय पे पानी जरूर पीना चाहिए।

0: तो सखियों, चलते हैं फिर से मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं एक और गीत।
1: अंडा अंडा अंडा अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है, ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

सखियों, हम सभी जानते हैं अभी छुट्टियों का समय चल रहा है और इसमें हमें बच्चों के साथ समय बिताने और उनको बिजी रखने के लिए घर के अंदर और बाहर कई मज़ेदार और रचनात्मक गतिविधियाँ की जा सकती है। हम सभी जानते हैं बच्चे पूरा दिन घर पे होते हैं और अपनी मस्ती और अपने बचपने से पूरे घर को महका देते हैं, लेकिन उनके समय का सदुपयोग हो, उनको कुछ नया सीखने को मिले, इसके लिए हम कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ करवा सकते हैं। इन गतिविधियों से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है और उनका स्क्रीन टाइम भी कम होता है। सखियों, हम सब बच्चों के साथ मिलकर फिगर पेंटिंग या स्केचिंग करनी चाहिए। बच्चों को रंग बिरंगे क्ले बहुत पसंद होते हैं, उनके साथ में क्ले से खिलौने बनाएं। हम उनके साथ घर में कोई खिलौना छुपा दे और फिर उनको बोले वो खिलौना ढूंढने को और उसको कोई सुराग दे दे, तो ये बहुत अच्छा गेम होता है और बच्चे इसको बहुत पसंद भी करते हैं। और सब बच्चों को कॉमिक्स या ज्ञानवर्धन कहानियाँ उनके साथ पढ़े। बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत अच्छा लगता है। ये पुरानी टाइम से चल रहा है कि हम दादी नानी से हमने भी कहानियाँ सुनी है और हम आज देखते हैं कि हमारी जो मम्मी है यानी उनकी जो दादी हो गई वो उनको कहानियाँ सुनाती है और ये बहुत अच्छा अनुभव लगता है। तो इस तरीके से कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ उनको सुनानी चाहिए। उनको घर के नज़दीकी गार्डन में लेके जाएं और उनमें उनसे पानी डलवाएं, पौधारोपण करवाएं, पेड़ लगवाएं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। हरी घास पे बैठकर पिकनिक का आनंद भी ले सकते हैं। बच्चे को छोटे गमले में पौधे लगाएं, उनको पानी देने का सिखाएं और पार्क में उनके साथ फुटबॉल, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक जैसे खेल खेलने चाहिए। इन गतिविधियों से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और बच्चे के समय का भी सही सदुपयोग होता है। सखियों, हमें बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम देना चाहिए और आज के युग में सभी लोग यानी लोग बच्चे सब फ़ोन के आदि बन चुके हैं, लेकिन आगे चलकर तो उनको यही स्क्रीन के सामने बैठ के अपना काम करना है, लेकिन अभी कोमल कोमल जो आँखें हैं उनकी वो भी दुनिया को देखना चाह रही हैं, दुनिया में एक नया अनुभव लेना चाहती है। तो हमें उन्हें स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रखना चाहिए और उनके साथ में शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ करनी चाहिए जिससे उनके माइंड का डेवलपमेंट हो, उनकी सोच क्रिएटिव सोच बने। उनके साथ हमें समय बिताना चाहिए, ना कि उनके हाथ में फ़ोन थमा के अपना काम करना चाहिए। सखियों, काम तो पूरा जीवन यूं ही चलता रहेगा लेकिन बच्चों का बचपन चला जाएगा, इसलिए हमें बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनके समय का सदुपयोग करना चाहिए, उनको रचनात्मक गतिविधियों की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि उनके माइंड का डेवलपमेंट होए। सखियों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी जो अभी मैंने आपको दी ये सभी आप अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है और इस टाइम हमें बच्चों के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताना चाहिए। इसी के साथ सुनते हैं एक और गीत।

सखियों, हम सभी चाहते हैं हमारी त्वचा खूबसूरत और ग्लोइंग दिखे। इसके लिए हमारे घर में ही कुछ प्राकृतिक तरीके से हम कुछ आसान उपायों से हमारी त्वचा को निखार सकते हैं। सखियों, हमें 2 चम्मच बेसन में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर सादे पानी से धो लें। ये त्वचा की टैनिंग दूर करता है और साथ ही साथ त्वचा को ग्लोइंग भी बनाता है। 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदे नींबू के रस के मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा में कसाव आता है और दाग धब्बे हल्के होते हैं। सखियों, रात को सोने से पहले हमें अपना चेहरा जरूर धोना चाहिए, क्योंकि दिन भर की जो धूल मिट्टी लगी होती है इससे हमारा चेहरे पे मुहासे आ सकते हैं। इसलिए हमें चेहरे को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद उस पे ताज़ा एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। यह त्वचा की गहराई से मॉइस्चराइज करता है और मुहासों को भी कम करता है। सखियो, रात में मेथी दाने को पानी में भिगोकर रखें। सुबह उस पानी से बाल धोने से भी बालों का झड़ना कम होता है। हफ्ते में एक बार नारियल या बादाम के तेल को गुनगुना करके बालों की जड़ों पे जरूर लगाएं, मालिश करें। इससे हमारे बालों में जान आती है और बाल मजबूत होते हैं, बालों को पोषण मिलता है। संख्यो, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से ही हमारी त्वचा भी अच्छी रहती है, बाल भी अच्छे रहते हैं और हमारी बॉडी भी फिट और हेल्दी रहती है। चेहरे पर थकान और डार्क सर्कल से बचने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद भी जरूर लेनी चाहिए। सखियों, कहने का मतलब ये है कि चेहरे पर लगाने की बजाय हमें शरीर में कुछ हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए, यानी अपनी डाइट में सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए कुछ जरूर शामिल करना चाहिए। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को भिगो के हमें खाने चाहिए, और साथ ही साथ लिक्विड यानी कि छाछ, दही और तरबूज का जूस भी का

शरबत, ये सब भी अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इन सब से अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो अपने आप ही हमारी स्किन भी ग्लोइंग रहेगी, बाल भी अच्छे रहेंगे। अगर हम अच्छा पोषण मिलेगा हमारे शरीर को तो अपने आप ही हमारे बालों में और हमारी त्वचा में भी पोषण मिलेगा। तो सखियों, हमें साथ साथ में ये ब्यूटी टिप्स तो करनी ही चाहिए, लेकिन अपनी डाइट में भी कुछ सुधार करना चाहिए, अपनी दिनचर्या को भी नियमित बनाना चाहिए। तो सखियों, इसी के साथ सुनते हैं एक और गीत।

सखियों, आज आप सभी के साथ विभिन्न विषयों पे बात की। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियाँ जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे आपके जरूर काम आएगी, आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। और सखियों, इसी के साथ मेरे विदा होने का समय हो गया है, तो आप सभी को हर्षिता का एक बार फिर से नमस्कार।

अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार बुलेटिन। ये दोनों ही समाचार

0: People from other faiths also gathered outside mosque to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down 4 Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number 2 Kunlavut Viditsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश अब समाचार विस्तार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए ये ओएसएम की व्यवस्था है पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं एनटीए ने बताया

0: तक 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धरमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्ति

0: को कल अदालत ने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखोदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोग

0: को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 101.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 2:30 हो चुके हैं। आइए सुने कुछ फिल्मी नगमे।

सो तो अभी आपने मोहम्मद रफ़ी के साथ लता की आवाज़ सुनी। फिल्म का नाम था आप आए बाहर आई। गीतानंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रविंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस समय ये फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

श्रोताओ, अभी आपने सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ें सुनी। इस नगमे को हमने लिया था फिल्म प्रेम रोग से। इस समय आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से आप सुन रहे हैं कुछ फिल्मी नगमे।

नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

श्रोताओ, अभी आपने संगम फिल्म में मुकेश की आवाज़ सुनी। गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ था। आइए सुने फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला नगमा।

श्रोताओ, अभी आपने अमानत फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को सुना। साहिर के नगमे को सुरों में ढाला था रवि ने। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 3 बजने को है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकात के तई ज्यादा हसास रवैया अख्तियार करें। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबनाए हॉर्मुज के नज़दीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। भारत और चीन की सरहदी उमूर से मुतालिक सलाह मशवरे और तालमेल के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 35वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आज मुल्क और बैरून मुल्क में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के अलावा सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम में मुनाकिदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेजिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरक की 30वीं रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज आवाम और खासतौर पर खवातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधही और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निपटने की गरज से हमेशा तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निपटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। द प्रेजिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज्म व जब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला मुल्क का आला तरीन रस्मी एजाज है। इस दौरान सिक्किम को बाजाबता तौर पर एक मुकम्मल ख्वानदा रियासत करार दे दिया गया है। ये ऐलान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबरधन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेजी लाए। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए

आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीब कार्य के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिनमें बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तावुन, बर वक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तकम जंगबंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुस के नज़दीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमरीकी फौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुस के नज़दीक अमरीकी फौज और उसके तजारती जहाज़ों के लिए खतरा बने हुए थे। ईरान 5वें ड्रोन दागने की भी तैयारी कर रहा था। अमरीकी सेंटर कमान ने अपनी कार्रवाई को कतई तौर पर दिफाई बताया और जंगबंदी बरकरार रखने का इरादा जाहिर किया। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बंदर अब्बास के नज़दीक अमरीकी हमलों की तस्दीक की है और कहा है कि इसने अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि पासदाराने इनकलाब ने जिस अड्डे को निशाना बनाया उसकी निशानदेही नहीं की है। दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई से सिफारती कोशिशों को धचका लगा है, जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अब भी जारी हैं। 4 दिन पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों मुल्क मौजूदा जंगबंदी को 60 दिन तक बढ़ाने से मुतालिक माहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुंच गए थे। अलबत्ता व्हाइट हाउस ने समझौते के एक मुसवदे से मुतालिक ईरानी सरकारी मीडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया और उसे पूरी तरह गलत बताया है, जिससे बातचीत के इम्कानात कम होते दिखाई दे रहे हैं। आबनाए हुरमुस के नज़दीक अमरीका ईरान जंगबंदी बराह रास्त फौजी महाजाराई में तब्दील हो गई है, जो पहले ही कशीदगी का शिकार थी। अमरीकी सेंट्रल कमान ने इतला दी है कि अमरीकी फौजों ने ईरान के 4 ड्रोन्स को मार गिराया, जो तजारती जहाजों को निशाना बना रहे थे, और उसके बाद बंदर अब्बास में मिजाइल लॉन्च करने वाली एक साइट को तबाह कर दिया गया। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने अमरीका के एक फौजी अड्डे पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया है। कुवैत के फजाई दिफाई निजाम को भी फाल कर दिया गया है, जो दुश्मन के मिसाइल को रोक रहा है। इसी दौरान ये बहरान कंट्रोल से बाहर होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब इसराइली फौज ने अप्रैल में हुई अलहदा जंगबंदी के बाद से लबनान में लोगों से निकल जाने के सिलसिले में अपना सबसे बड़ा हुक्म जारी किया है। जनूबी जारानी दरिया में तमाम शहरियों को हुक्म दिया गया है कि वो इसराइली सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर निकलकर फौरन शिमाल की तरफ चले जाएं। इसराइल की फौज ने इस पूरे जोन को एक जंगी इलाका करार दिया है और कहा है कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ इंतहाई कुव्वत के साथ कार्रवाई करेगा। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल पीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए कायम वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। भारतीय वफद की क़यादत मशरकी एशियाई मुल्कों के उमूर के शोबे के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष ने की, जबकि चीन की वजारत खारजा के बाउंड्री एंड ओशियानिक उमूर के महकमे की डायरेक्टर जनरल हु यांगकी अपने मुल्क की वफद की क़यादत कर रही थी। वजारत खारजा ने कहा कि ये मुजाकरात तामीरी और मुफीद रहे। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीक अमल की तरतीब और सड़क के दोनों जानिब इश्तराक से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत ने बताया कि भारतीय वफद ने सरहद के आर पार बहने वाले दरियाओं से मुतालिक माहिरीन की सतह के निज़ाम के बारे में जल्द मीटिंग बुलाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने सिफारती और फौजी सतहों पर बाज़ाब्ता तबादले और रवाबित बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। इसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम

की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया ने आज बकरीद के त्यौहार के मौके पर खसूसी इंतजाम किए हैं और इस त्यौहार के लिए एहतियाती इकदाम किए हैं। ईद उल अजहा का त्यौहार बांग्लादेश में भी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है, जहां मुल्क के करोड़ों

0: मना रहे हैं। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिले। भारत ने आज सिंगापुर ओपन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के अलावा चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी की मर्दों की जोड़ी और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की मिक्स जोड़ी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरे क्वालिफायर्स में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी। ये मैच कल न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स कल रात इसी मैदान पर खेले गए एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर दूसरे क्वालिफायर्स में पहुंची थी। इस मैच की फाता टीम इतवार को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकात के तई ज्यादा हसास रवैया अख्तियार करें। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तकम जंगबंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुज के नजदीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। भारत और चीन की सरहदी उमूर से मुतालिक सलाह मशवरे और तालमेल के लिए कायम वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। और आज मुल्क और बैरून मुल्क में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप आकाशवाणी से उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: अब सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल को, फिल्म है कुर्बान।
1: शुक्र।

कुर्बान फिल्म के नगमे के साथ ही आज का फिल्मी ना मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। ईद उल अज़हा के मौके पर सामीन अब सुनिए जनाब शमीम हैदर का तहरीर करदा ये फीचर। इसका उन्वान है ईद उल अज़हा।

0: जानवर की कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है और इंसान को वो ये मौका देता है कि वो जिंदा रहकर दुनिया में आला मकसद के लिए काम करे।
1: इलाही, हमारे हाथ तेरी इबादत और तेरे जलाल व कुदूसियत के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं उसको कबूल कर, क्योंकि तू ही दुआओं का सुनने वाला है और नियतों का जानने वाला है। तू हमारी नस्ल में से भी एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो हमारी तरह मुस्लिम व मोमिन हो। इलाही, तू हमको अपनी इबादत और बंदगी करना सिखा दे और हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। तू ही माफ़ करने वाला है और तू ही अपने आजिज बंदों पर मेहरबान होने वाला है। हमारी दुआओं को कबूल कर ले और जो कौम हमारी नस्ल से पैदा हो उनमें अपना बरगुजीदा रसूल भेज दे जो उनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, इल्म हिकमत की तालीम दे और उनके दिलों को साफ और पाक कर दे। ये दुआएं उन जुबानों से निकल रही थीं जो एक राह इलाही में अपने जज्बात तो इरादे की कुर्बानी कर चुका था और दूसरा अपने जान और नफ्स की। दोनों ने अपनी सबसे कीमती चीज नफ्स को राह इलाही में लुटा दिया था। एक ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल को और दूसरे ने अपनी जान अजीज को। दोनों ही मुजाहिद थे और अल्लाह के लिए जीते और मरते थे। परवरदिगार आलम ने दोनों की दुआओं को कबूल किया और इस तरह किया कि दुनिया के 5,000 साल से जायद इनकलाबात, तूफान और हादसात ने भी उनकी मकबूलियत की सदाकत को आँच ना आने दी। वो चंद पत्थरों से बनाई गई चार दीवारी जिसके चारों तरफ इंसानी हस्ती की कोई अलामत नहीं थी, करोड़ों इंसानों की इबादत गाह और क़िबला वजूह बना दिया जो अब दुनिया इस्लाम का मरकज़ है।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 4 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये मैं एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है।

0: क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है। अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
0: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कॉन्डक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती हैं। तो उसमें

0: जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं, एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो. तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा. तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है.
1: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF.
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी. सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट द

0: फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है।
1: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और
0: ये
1: CRPF।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग-अलग रूप से चयनित करना पड़ता है क्या?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कितनी वैकेंसीज है, उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी
1: गर्व की बात है।
0: और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया
1: वाह, क्या
0: जी।
1: बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफकोर्स मैं भी काफी खुश था
1: जी,
0: जी।
1: निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर

0: उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व तो एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा। CRPF में भी यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपने
0: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी,
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके, कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है, शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूँगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूँगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं।

0: मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था, लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है पीछे, मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
1: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
0: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
1: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
0: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
1: हाँ जी
0: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो बिनाका गीत माला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिनाका गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या हाँ। गोल्डन वॉइस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल जी। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो CRPF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण

0: होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचाते हैं रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है। जी
1: निसंदेह
0: बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से।
1: धन्यवाद,
0: मान
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: जय हिंद।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, संध्याकालीन सभा में हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। सभा के आरंभ में लीजिए युवा साथी अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे ईद उल जुहा से आज की बात के साथ। दोस्तों, ईद उल जुहा हमारे देश का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। ये पर्व त्याग, बलिदान और इंसानियत का संदेश देता है। ये त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के अनुसार जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। श्रोताओं, इस पर्व का संबंध हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी से जुड़ा है। कहा जाता है कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करने के लिए इन्होंने बेटे की कुर्बानी देने का निश्चय किया था। इनकी श्रद्धा और विश्वास को देखकर अल्लाह ने इनके बेटे की कुर्बानी अस्वीकार कर दी। मित्रों, इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ये पर्व हमें त्याग, सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करने की सीख भी देता है। ईद पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं देते हैं और प्रेम व सौहार्द का संदेश फैलाते हैं। साथियों, ये पर्व केवल धार्मिक पर्व नहीं है, जबकि ये मानवता, दया और बलिदान का प्रतीक है। हमें भी इस पर्व से प्रेम, भाईचारे और दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जोधा अकबर का ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आइए अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। श्रोताओं ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। इसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ये समस्या मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। साथियों ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का

ना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के चारों ओर रोक लेती है। ये गैसें वाहन, कारखानों, बिजली संयंत्रों, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होती है। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव अत्यंत गंभीर है। इससे हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं अत्यधिक गर्मी तो कहीं भारी वर्षा और कहीं सूखा देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव कृषि, जल संसाधन, वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। वाहनों का प्रयोग कम करना होगा और ऊर्जा की बचत करना भी आवश्यक होगा। साथ ही पर्यावरण में के प्रति जागरूकता फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल एक देश की समस्या नहीं है, जबकि पूरे विश्व की चुनौती है। यदि हम समय रहते इसके प्रति सजग नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए हमें मिलकर पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तो श्रोताओं, बातें तो चलती रहेगी युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। आइए एक बार फिर चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का ये गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें।
2: अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, मान्यताओं, दर्शन, विचारधाराओं और भाषाओं को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार एक वाटिका की शोभा उसमें भांति भांति के बहुरंगी पुष्पों से होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा देश भी अनेक विभिन्नताओं को अपने में समेटे हुए एक सुंदर उद्यान की भांति सुशोभित है। साथियों, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध जैसे सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पंजाबी, मद्रासी, बंगाली और कश्मीरी सभी एक साथ रहते हैं, लेकिन सभी पहले भारतवासी है, फिर कुछ और है। ये विषमताएं भारतीयों को तोड़ती नहीं हैं, जबकि एक माला की तरह जोड़ती है। इन्हें कमजोर करने की बजाय इन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। मित्रों, यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च है। यहाँ रामायण, गीता, कुरान और बाइबल का पाठ होता है, लेकिन सबके स्वरों का एक ही उद्देश्य है, मानवता की सेवा। हम भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता है एकता की भावना, और यही भावना हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता संस्कृति में रची बसी है। राष्ट्रीय एकता कोई बाह्य अवधारणा नहीं है, ये तो एक व्यक्ति के हृदय की वो भावना है जो उसे अपने मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम करना सिखाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे आवश्यक है कि हम सभी अपने राष्ट्र की हर वस्तु, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, भूमि, सागर, सभी को अपना समझें।

उन्हें जाने, उनसे प्यार करें, उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। हम सभी मन, वचन और कर्म से आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, यही राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र है। तो साथियों, चर्चा और भी करेंगे युवाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। लीजिए अब सुनिए फिल्म दीवाना का ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आइए अब बात करते हैं प्रदूषण की। श्रोताओं प्रदूषण एक धीमा जहर है जो दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन को नष्ट करता जा रहा है। प्रदूषण को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं, कल कारखानों, उड़ती हुई धूल जैसे कारणों से होता है। मित्रों ध्वनि प्रदूषण वाहनों के हॉर्न, मशीनों के चलने से और अन्य शोर करने वाली वस्तुओं से होता है। जल प्रदूषण नदियों और तालाबों में फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ और प्लास्टिक कचरा व अन्य वस्तुएं डालने से होता है। साथियों प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है जो हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और

कचरे के उचित प्रबंधन को अपनाना चाहिए। श्रोताओं, हमारी सरकार को भी कठोर नियम बनाकर औद्योगिक और वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। आम नागरिकों को जागरूकता फैलाकर प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पुनःचक्रण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रदूषण नियंत्रण में हमारा योगदान भी बड़े बदलाव ला सकता है। इसीलिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर हमें अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार के उपाय अपनाकर हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो साथियों, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए, अब सुनिए फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आइए अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं महान संस्कृति है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हमारी संस्कृति सर्वाधिक संपन्न एवं समृद्ध है और अनेकता में एकता ही इसकी मूल पहचान है। दोस्तों, हमारा देश भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक से ज़्यादा जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग और पंथ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश के सभी नागरिक अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी भी माना जाता है। साथियों, जीने की कला हो, विज्ञान हो और चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, इन सब में भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, लेकिन हमारे देश भारत की संस्कृति आदि काल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। मित्रों, संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वे अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों का निर्धारण करते हैं। संस्कृति का साधारण अर्थ संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि और सजावट से होता है। श्रोताओं, हमारे देश के लोग वसुदेव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं, यानी जिसमें सभी मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में भले ही भाषा और रंग रूप अलग हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं। विश्व की सबसे बड़ी पौराणिक कथाएं रामायण और महाभारत के विषय में आज कौन नहीं जानता। सही में आज हमारी भारतीय सभ्यता अनंत और अपार है। हमारी इस सभ्यता को देखने के लिए विश्व भर से लोग प्रतिवर्ष हमारे देश भारत पहुंचते हैं। इसीलिए आज हमें अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है। तो मित्रों, चर्चा और भी करेंगे। आइए एक बार फिर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म धड़कन का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1883 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि और विचारक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म भी हुआ था। 28 मई के दिन ही सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके इतिहास भी रचा था। सन 2008 में नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का आधिकारिक तौर पर अंत हुआ और देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य भी आज ही के दिन घोषित किया गया था। मित्रों, 28 मई के दिन ही सन 1952 में भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष का जन्म भी हुआ था। आज ही के दिन सन 1954 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का निधन भी हुआ था। 28 मई के दिन ही एमनेस्टी इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है। तो साथियों, युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब चलते हैं एक गीत की ओर। लीजिए अब सुनिए फिल्म आरजू का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें हमारे एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिर आएगी। चौपाल का वक्त रहेगा शाम 7 बजे। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजल।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर, 6:45 पर समाचार होंगे राजस्थानी में हमारे जयपुर केंद्र से। रात्रि 8:45 पर समाचार होंगे हिंदी में। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। सभा के आखिर में रात्रि 11 बजे समाचार होंगे हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोताओं, लीजिए अब सुने कार्यक्रम से राय की।

ओए होए कुरड़ की तोनी वैर त नानी लाणे वो भुन दे मछाणी रन दाणे जग पर देसियां कुन भुन दे मछाणी रन दाणे वांदे अराइयां कुन लोकां दे भुन दिए पीलियां कणकां लोकां दे भुन दिए वे ओए होए पीलियां कणकां साडे जो निमाणे वो भुन दे मछाणी रन दाणे जग पर देसियां कूं भुन दे मछाणी रन दाणे वांदे अराइयां कूं। आओ एक बिया बहुत सोहना गीत।

कहीं को मोटा पतला बने दें, कहीं को रज कोई भूखा मरे दें, कहीं को जल्दी चीर के सदे दें, कहीं को चंगा भला मार मुके दें, कीड़े पत्थरां विच तू पालें, हिन तेडे खेड निराले, ओ नीली छतरी आले। कोई डाढ़ा कोई हीणा क्यों है, कोई चतर कोई शोदा क्यों है, कोई तोला कोई मासा क्यों है, कोई कोड़ा कोई पताशा क्यों है, कई चिट्टे हैं कई काले।

क्यों हैं, कहीं को ही कनी नसीब थींदा, कहीं को अजड़ देंदा क्यों हैं, कई बन गए बखता आले, हैं तेरे खेद निराले, ओ नीली छतरी आले, कहीं को देन दे महल चबारे, कहीं को त्रुटि होई छपरी क्यों है।

कहीं को कुड़ी मुची खुश चा करें दे, कहीं को ढेर गमा दे चा दें दे, कहीं दी पकी हुई फसल पुसें दे, कहीं दे

0: निराले।
1: हुणे तुसां सिराए की कावे पाठ सुनदे पए हवे। कावे पाठ करेंदे पए हन कमल नयन वर्मा। सिराए की भैणो भरावो, मेरा ख्याल है तुहाको कवितावां पसंद आईयां होसो। ते प्रोग्राम दे अखीर विच मैं तुहाको एक सिराए की गीत सुनवेंदी पई हां। गीत बहु वधिया है, चस घिनो।

0: ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਕੋ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराई की। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 होने को है। लीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। कृपया इन समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीट वेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आज जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को जल और शरबत पिलाया गया। जैसलमेर में अभियान के तहत भू जल संरक्षण विभाग की ओर से जल संरक्षण शपथ, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जल संरक्षण कार्यों में उद्योग जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। राजसमंद में उपमुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर पानी बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भरतपुर जिले में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने ये स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के तहत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सह सलाहकारों की नियुक्ति करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। खेल मंत्री डॉ.

0: डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, खिलाड़ियों की भागीदारी और वास्तविक समय समन्वय के लिए अधिक प्रभावी योजना बनाने में सक्षम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान में प्रदेश ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। 24 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में दो महीनों में राज्य में करीब 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और 35,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निरामया राजस्थान के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, त्वरित जांच, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, जन भागीदारी, तकनीक और संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा देशभर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहर और कस्बों में सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमा दहादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में भी ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में त्योहारी खरीददारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुलपति पद पर रहते हुए अनियमितताएं करने के आरोप में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। राजभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये आदेश राज्य सरकार के परामर्श के बाद जारी किए गए हैं। वहीं एक अन्य आदेश में राज्यपाल ने राजुवास जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को अपने कार्य के साथ साथ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं। वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एन के पांडे को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर नौतपा के दौरान तेज गर्मी का असर बना हुआ है। सभी शहरों में बढ़ते तापमान और लू के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं राज्य के 25 से अधिक जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर और भरतपुर में आज दोपहर बाद हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ. राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है।
2: हीटवेव का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघ गर्जन, तेज अंधड़, तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से

0: तापमान में अगले दो तीन दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
1: मानसून के आने से पहले कोटा जिले में वन विभाग ने बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के मंडारा रेंज में इस बार पारंपरिक तरीके के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाने के लिए 5 लाख सीड बॉल तैयार की जा रही हैं। इन तैयार बीज की गेंदों को ड्रोन और श्रमिकों के माध्यम से जिले के वन क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। इन सीड बॉल्स में अर्जुन, रौंज, खैर और कुमठा जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधों के बीज शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मिट्टी, गोबर और राख के मिश्रण से तैयार ये बॉल्स बीजों को धूप, कीड़ों और पक्षियों से सुरक्षित रखती हैं। बंजर और दुर्गम इलाकों के लिए ये तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का दिया आश्वासन। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी। पश्चिमी भागों में अगले एक दो दिन हीटवेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। कुर्बानी का प्रमुख इस्लामिक पर्व ईद उल अजहा आज जिले भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह फर्ज की नमाज के बाद से ही विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में शहर की मुख्य नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। वहीं एमआई रोड और जौहरी बाजार सहित सभी ईदगाहों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। घर घर में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शहर की बकरा मंडियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किया। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर, चित्रकला प्रतियोगिता, संगोष्ठी और कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कल मिशन हरियालू राजस्थान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आगामी मॉनसून के दौरान प्रदेश भर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों और पिछले सालों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो टैगिंग एवं लाइव फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को लगाए गए पौधों की जीवितता को सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधरोपण को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में जून माह एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मलेरिया उन्मूलन की दिशा में जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, मजबूत सर्विलांस और समय पर जांच तथा उपचार सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी जून माह में प्रदेश में व्यापक स्तर पर रोकथाम एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ग्राम स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां, रैली, विद्यालयों में कार्यक्रम,

प्रचार कार्यों के द्वारा मलेरिया के कारण और बचाव के उपायों की जनता को जानकारी दी जाएगी। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की शिक्षा सीधे तौर पर समाज से जुड़ी शिक्षा है। इसका उपयोग विद्यार्थी जरूरतमंद, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने विधि शिक्षा में राष्ट्र और समाज हितों को प्राथमिकता देने और इस दिशा में उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रदेश को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दीक्षा प्राप्त कर 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की डिग्रियां डिजी लॉकर में कंप्यूटर का बटन दबाकर लाइव की। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार को ब्रिटेन की संसद के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए विशेष आमंत्रण प्रदान किया गया है। ये आमंत्रण उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दिया गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बीते दिनों फिट इंडिया साइकिल संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम कॉमनवेल्थ डे 2030 रखी गई, जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टेडियम परिसर के चारों ओर आयोजित साइकिल रैली रही। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली और कॉमनवेल्थ खेल 2030 के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पहले आज री खास खबर प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सु संबंधित पढ़ेसरियां री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है और राज्य री घनकर ठोड़ा माथे तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हलका माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहवन रो पूर्वानुमान।

समाचारों रे साथ है मैं संगीता शर्मा और अब है समाचार विगतवार। प्रदेश में चल रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जा रही है। आ गतिविधियां रो लखस इन अभियान सु 32 लोगों ने जोड़नो और जल संरक्षण रे प्रति जागरूकता बधानो है। इनी कड़ी माए झुंझुनू जिले रा नवलगढ़ माए जन जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। कार्यक्रम माए आया लोगों ने पौधा बांटर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो। भीषण गर्मी ने देखता थका राहगीरा ने पानी और शरबत पिलायो गयो। जैसलमेर माए अभियान रे तहत भू जल संरक्षण महकमारी कानीसू जल संरक्षण शपथ पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर माए आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत जिला कलेक्ट्रेट माए कार्यशाला राखी जी। इन कार्यशाला माए जल संरक्षण कामा माए उद्योग जगत स्वयंसेवी संस्थावां और सामाजिक संगठनारी सक्रिय सहभागिता माथे जोर दियो गयो। राजसमंद माए उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ने लेर पानी बिजली री आपूर्ति स्वास्थ्य सुविधावां और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री प्रगति री समीक्षा करी। वणा इन अभियान ने जन आंदोलन बनावन री जरूरत माथे जोर दियो। भरतपुर माए भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पढ़ेसरिया ने आश्वस्त करो कि CBSE री कानीसू शुरू करी जी ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM 32 पारदर्शिता पक्की करने रे लखसू शुरू करी जी है। एक चौकी पहल है। श्री प्रधान नवी दिल्ली माए CBSE रा अहलकारा रे साथ है बैठक रे पाछे खबर नवीसासू बणतल माए आ बात कही। CBSE कक्षा 12वीं री परीक्षा रे पुनर्मूल्यांकन पोर्टल माए OSM माए विसंगतियां और तकनीकी खराबी ने लेर वणा पढ़ेसरिया ने आश्वस्त करो कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रे चालता

0: अगली शिकायतों रो समाधान करियो जावेला।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा री संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। एनटीए रे मुजब परीक्षावां अबे 31 मई 6 और 7 जून ने राखी जावेली। आज होवण वाली परीक्षा ईद उल अजहा रे कारण पुनर्निर्धारित करीजी है। एनटीए बतायो कि दीतवार ने परीक्षा देवण वाला उम्मीदवार रा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और अने एनटीए री आधिकारिक वेबसाइट सू डाउनलोड करिया जा सके है। 6 और 7 जून ने परीक्षा देवण वाला बाकी उम्मीदवार रा प्रवेश पाना भी बेगाई जारी करिया जावेला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम रे तहत राष्ट्रीय खेल संगामाएं सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारारी नियुक्ति करेला। इन पहल रे माध्यम सू राष्ट्रमंडल खेल 2030 री तैयारियां ने चोखो बनायो जा सकेला। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि इन पहल रो लखस विशिष्ट डिजिटल प्रणालियां ने सुव्यवस्थित करनो और होड़ा राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरां और खिलाड़ियां री भागीदारी और साचे वक्त रे समन्वय खातिर 32 प्रभावी योजना बनावण माए सक्षम करनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान माए खास उपलब्धियां हासिल करी है। 24 मार्च सु शुरू हुआ इन अभियान माए 2 महीना माए राज्य माए करीब 19 लाख लोगों री स्क्रीनिंग करीजी और 35,000 सू 32 नुआ रोगियों री पिछाण करीजी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि निरामया राजस्थान रे विजन रे तहत टीबी जड़ी गंभीर बीमारी रे उन्मूलन खातिर स्क्रीनिंग तुरंत जांच जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता रे प्राथमिकता दी जा रही है। वणा कहो कि जन भागीदारी तकनीक और संवेदनशीलता रे साथ स्वास्थ्य सेवावां मुहैया करार आपा टीबी मुक्त राजस्थान री दिशा माए काम कर रिया हां। कुर्बानी रो तिवार ईद उल अजहा देश भर माए धार्मिक उचास रे साथ मनायो जा रियो है। प्रदेश माए जयपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा शहर कस्बा माए सुवारे ईदगाह और मस्जिदा माए ईद री नमाज अदा करी जी। बाद में लोगा एक दूजे सु गले मिलर ईद री मुबारकबाद दी। सूफी संत ख्वाजारी नगरी अजमेर माए भी ईद उल अजहा रे मौके माथे नमाज रे पाछे लोगा एक दूजे ने मुबारकबाद दी। और ब्यूरो माणा खबर नवी सु।
2: आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर साल में मात्र 4 बार खुलने वाला जन्नती दरवाजा आज एक दिन के लिए खोला गया, जिसके चलते जन्नती दरवाजा खुलते ही भारी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ दरवाजे के नीचे से गुजरने के लिए उमड़ पड़ी। सुबह से ही ख्वाजा साहब की दरगाह सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा कर देश समाज में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। नलमा दहादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही माए भी ईद उल अजहा रो पर्व हकीकत रे साथ मनायो जा रियो है। इन मौके माथे बाजारा माए त्योहारा री खरीदारी और चहल पहल नजर आ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुलपति पद पर रहता थका अनियमितता रे कारण आरोप माए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप ने पद सू तुरंत हटाने रा हुकुम जारी करया। राजभवन सू जारी विज्ञप्ति रे मुजब ए आदेश राज्य सरकार रे परामर्श रे पाछे जारी करया गया है। वटीने एक दूजे आदेश माए राज्यपाल राजूवास जोबनेर रा कुलगुरु प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा ने काम रे साथे साथे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय रा कुलगुरु ने अतिरिक्त कार्यभार संभालने रा हुकुम दिया है। वटीने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर एनके पांडे ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रो अतिरिक्त कार्यभार दियो गयो है। और अब है मौसम। प्रदेश रे घनकर ठोड़ा माथे नौ तपारे चालता तेज गर्मी रो असर बन्योड़ो है। सगड़ा शहरा माए बदता तापमान और लू रे असर सू जनजीवन प्रभावित हुए रियो है। दिन रे बकत सड़का माथे अघोषित कर्फ्यू जड़ा हालात बन्योड़ा है। लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश माए सबसू 32 तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर माए दर्ज करी जो। वठीने राज्य रा 25 सू 32 जिला माए लाड़ला 24 घंटा रे चालता दिन रो पारो 42 डिग्री सेल्सियस सू ऊपर दर्ज हुयो। श्रीगंगानगर और भरतपुर माए आज दोपहरा

0: अच्छा हल्की बिरखा होने सू लोगों ने गर्मी सू थोड़ी घनी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर का निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश रा पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहने री आस है।
1: हीट वेव का ये दौर अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 27-28 मई से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघ गर्जन तेज हवाओं के साथ में कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान राज्य के कई भागों में तेज मेघ गर्जन तेज अंधड़ तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।
0: मानसून रे आवण सू पहलियां कोटा जिला माए वन महकमो मोटे स्तर माथे पौधा रोपण री तैयारी शुरू कर दी है। जिले रा मंडाणा रेंज माए इन बार पारंपरिक तरीका रे साथे साथे आधुनिक तकनीक रो प्रयोग करर हरियाली बधाने रो लक्ष राख्यो गयो है। इन रे तहत दुर्गम और पहाड़ी खेतरा माए हरियाली ने बधाने खातिर 5 लाख सीड बॉल तैयार करी जा रही है। आ तैयार बीज री गेंदा ने ड्रोन और मजूरा रे मार्फत सू जिला रे वन खेतरा माए फैलायो जावेला। आ सीड बॉल्स माए अर्जुन रोंज खैर कमुठा जड़ी स्थानीय प्रजातियां रा पौधा रा बीज भेड़ा है। ध्यान जोग है कि मिट्टी गोबर और राख रे मिश्रण सू तैयार आ बॉल्स बीजा ने धूप कीड़ा और पंछियां सू सुरक्षित रखे है। बंजर और दुर्गम इलाका खातर आ तकनीक बेहद सस्ती और प्रभावी साबित वेरी है। प्रदेश माए 1 से 30 जून ताई बाल श्रम बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी रे खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 चलायो जावेला। इन अभियान रो लक्ष बाल श्रम और बाल तस्करी जड़ी गंभीर सामाजिक बुराइयां माते प्रभावी नियंत्रण स्थापित करनो और पीड़ित टाबरा रो पुनर्वास पक्को करनो है। अभियान रे प्रभावी संचालन रे खातिर सगला जिला रा पुलिस अधीक्षका ने हुक्म दिया गया है। अभियान रे तहत होटल ढाबा ईंट भट्टा फैक्ट्रियां रेलवे प्लेटफॉर्म बस स्टैंड धार्मिक स्थल अस्थाई बस्तियां माए रह रिया टाबरारी स्क्रीनिंग करी जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई ने आकाशवाणी सू मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। आ इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। इन रे खातिर श्रोता आपरा टोल फ्री नंबर 1800117800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माए जीओवी ओपन फोरम रे माध्यम सू भी विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव काले ताई स्वीकार करया जावेला। अजमेर रा किशनगढ़ एयरपोर्ट सू हवाई यात्रियां रे खातिर इंडिगो जुलाई माह सू 2 नवी उड़ान सेवावां शुरू करन जा रही है। किशनगढ़ ने दिल्ली और नोएडा सू जोड़न वाली आ नवी फ्लाइट्स रे शुरू होने सू अजमेर किशनगढ़ ब्यावर और आसे पासे री बड़ी आबादी ने बेहतर और तेज हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेली। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीणा बतायो कि 1 जुलाई सू दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू वेली। आ उड़ान सप्ताह माए 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार ने संचालित करी जावेली। इनरे अलावा 2 जुलाई सू नोएडा किशनगढ़ नोएडा फ्लाइट सेवा भी शुरू करी जावेली। आ सेवा सप्ताह माए 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार ने संचालित वेली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रे माए भारत केंद्र कानीसू सवाई माधोपुर माए वीर सावरकर जयंती मनाई जी। छात्रपति शिवाजी युवा मंडल री कानीसू राखी जो जयंती जलसे माए सावरकर रे राष्ट्र निर्माण माए योगदान ने याद करता हुआ संगोष्ठी और चित्रकला होड़ समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। होड़ माए विजेतावां ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करयो गयो। जैसलमेर माए भी सावरकर जयंती माथे न्यारी न्यारी होड़ा और संगोष्ठी राखी जी। इन मौके माथे घनी तादाद माए मौजूद युवावां ने पर्यावरण संरक्षण शपथ भी दिलाई जी। और खास खास खबर आखिर में एक कर फेरू सुनो। प्रदेश माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई कक्षा 12 री परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया माए विसंगतियां सू संबंधित पडेसरियां री सगली शिकायतां रे समाधान रो दियो आश्वासन। ईद उल अजहा रो पर्व प्रदेश भर माए अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। अर राज्य री घनकर ठोड़ा माते तेज गर्मी रो असर जारी। पश्चिमी हल्का माए आवता एक दो दिन हीट वेव रो दौर जारी रहवन रो पूर्वानुमान। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात

918 किलोहर्ट्स पर एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम चौपाल।

राम राम सा कार्यक्रम चौपाल सुनिए सगले परिवार ने भाई रामेश्वर का घणान घणा राम राम मोकला मोकला राम राम। भाई लोगों आज कार्यक्रम चौपाल लेर फिर हाजिर हूँ सा और आज देखा नहीं तो आपने ई क्षेत्र का माँ कई जगह सुनने मिली है बात के कठिन कठी जी की बूंदाबांदी है छिड़काव जो को है बरसात को वो हुई है पर ठीक है थोड़ी बहुत गर्मी जिकी ही वह थोड़ी सी बीशू राहत मिलेगी लेकिन फिर भी अभी देखा नहीं तो अब आ गर्मी को जो को मौसम चालन आ रही है एक माँ लू जिकी चालन आ रही है वह बड़ी खतरनाक है और खेत कार्य की जगह काम धंधा है बे भी आपा ने अब टेम सर संभालना जरूरी है और बे भी तो अपना सियाणा मिनके एक रहने के हाड़ी हड़कारो दे और पून फटकारो दे लेकिन अपन ने पून की तो ही फटकारो दिया अपन जाप तो अपन जुको है वो रखना जरूरी है और खेती पाती काम का सगे सगे अपा अपने जगह घर का काम धंधा है बे भी अपन ने ठंड ठंडे निबेड़ना जरूरी है और ई गर्मी को ई लू को बचाव रखना ऐसा पर आज अपा बातचीत कम करांगा आज थाने एक भेंट वार्ता सुना सियाँ डॉक्टर चंद्र शेखर जी शू बात करी अपने तिल की उन्नत खेती के बारे में और इनके अलावा आज एक नाटक सुना से थाना राजस्थानी नाटक है पग फेरो जका का लेखक बीरू राम चावरिया और प्रस्तुतकर्ता राजेश चड्डा जी है लेकिन बीशु पहला पां क्यों ना एक भजन सुन लिया क्योंकि संध्या को टेम है और पछे पां एक भेंट वार्ता और बीहू पछे फिर आप एक नाटक जो है वो सुनांगा सा लियो सुनो सा ओ भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल साथ है, अभी भजन सुनायो और शुरुआत में थाने बतायो ही हो कि आप एक भेंट वार्ता सुन सियाँ डॉक्टर चंद्रशेखर जी सू और आशु करीब बात आप तिल की उन्नत खेती के बारे में मां तो थे आ बातचीत सुनो सा। किसान भाइयों आपने इस क्षेत्र में आपना किसान भाई तिल की खेती भी काफी रकबे में करे और थे जानू भी हो कि हाड़ी के टेम का मां सरसूंगी और सावणी का मां मूंगफली और तिलगी की फसलों की बिजात है वह अपने किसान भाई लोग इस क्षेत्र का मां करे और काफी फायदों भी अपने किसान भाई लोग अभी उठावे। तो आज आपने सागे है डॉक्टर चंद्रशेखर जी और आशू जान श्या तिल की बुआई के बारे का मां। डॉक्टर चंद्रशेखर जी थारो घणो घणो स्वागत है चौपाल में। राम राम सा।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। तिलहिनी फसला में तिल की फसल ने बिया तो सिरमोर फसल माने और खाद्यान्न के रूप में भी इनको इस्तेमाल जो है वो अपना भाई लोग करे तो थे आ बात बताओगे तिल की फसल की के खासियत है।
3: किसान भाइयों मैं आज आपके साथ राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में तिल की उन्नत खेती पर कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं।
2: जी
3: तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जिसे हम तिलहन की रानी भी कहते हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: तिल की खेती कम पानी कम लागत तथा कम अवधि में अच्छी आय देने वाली फसल के रूप में जानी जाती है। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले की जलवायु तिल उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
2: जी
3: तिल के बीजों में लगभग 45-50% तेल तथा पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
2: जी बिल्कुल।
3: तिल का उपयोग तेल मिठाई बेकरी उत्पाद तथा औषधीय कार्यों में किया जाता है। बाजार में इसकी अच्छी मांग होने से किसान भाइयों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाता है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब पने बिजांत करने से पहली भूमि सुधार की बात करा या तिल की फसल के लिए किसी माटी बढ़िया रेवे इनकी बात करा तो थे किसी माटी बढ़िया मानो का तिल की फसल जकी है बापा बढ़िया पैदा कर सका या फिर बिंग जकी उपज है बापा बढ़िया ले सका।
3: तिल की खेती के लिए

0: जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है।
1: जी
0: खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जल भराव से तिल की फसल को नुकसान होता है।
1: डॉक्टर साहब, बुआई को टेम की तो इंगो है, किसे महीना से आप शुरुआत कर सका और किसे महीने तक आ पाएंगी जिकी तिल की फसल की जिकी बीजांत है बकर्स का।
0: हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर इन दोनों जिलों की अगर हम बात करें तो इन जिलों में खरीफ के मौसम में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक बुवाई करना उचित रहता है।
1: जी बिल्कुल,
0: मानसून की पहली अच्छी वर्षा के बाद बुवाई करने से अंकुरण अच्छा होता है।
1: इनकी बुआई जिकी है बा कतारा में कर सका या छिंटो मार्गे भी कर सका, ज्यादा फायदा किसे में है वो भी बताओ डॉक्टर साहब।
0: कतारों में बुवाई करने से हमें फसल प्रबंधन करने में सरलता होती है तथा उत्पादन बढ़ता है।
1: जी
0: इसलिए तिल की बिजाई के समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
0: बीज की बुवाई 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। बीज की मात्रा किस्मों के अनुसार अनुशंसित की गई है।
1: जी डॉक्टर साहब, कोई भी फसल की बीजांत आपा करां तो बिंगे लिए आपने किया कि एक तो किस्म की जानकारी होनी जरूरी है और इंग अलावा भी किस्म की जानकारी है बा अपना किसान भाई लोग ध्यान में रख तक बिंग जी की बीज की मात्रा है बा अपन कितनी रखनी है बिंगी भी जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी कोई भी फसल को जो उत्पादन है वो आप बढ़िया तरीका से को ले सका नहीं। तो इन वास्ते तिल की फसल के लिए किसी किस्म बढ़िया रहेगी और बिंग बीज की मात्रा है वह आपने कितनी रखनी है।
0: तिल की शाखा वाली किस्में जैसे RT 351, RT 372, RT 46 का जो बीज है वो 2 से 2.5 किलोग्राम बीज तथा जो शाखा रहित हैं, इनमें शाखाएं नहीं आती हैं, जो सीधी बढ़ती हैं, जैसे प्रताप या जिसको C50 भी कहते हैं, का 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
1: जी
0: किसान भाइयों, उन्नत किस्मों के चयन से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: और आपने हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के लिए किसी किसी किस्म की है बे बढ़िया मानी जाए आप भी बात आपने जो किसान भाई लोग है बने बताओ थे।
0: हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के लिए RT 351, RT 372, RT 46 तथा प्रताप सी किस्में अनुशंसित की गई हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: उन्नत तकनीकी के प्रयोग से तिल की उपज व लाभ बढ़ जाता है।
1: जी बिल्कुल, तिल की RT 351 एक किस्म जकी है, इनकी क्या खासियत है डॉक्टर साहब।
0: तिल की RT 351 किस्म कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा वर्ष 2011 में अनुशंसित की गई है। इसके बीज चमकीले सफेद होते हैं जिनमें तेल की मात्रा 50% होती है।
1: जी बिल्कुल,
0: यह किस्म 7 से 10 क्विंटल की औसत उपज के साथ 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म लीफ कर्ल, फेलोडी, तना व जड़ गलन रोगों के प्रति प्रतिरोधी है तथा सरकोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग व फली छेदक कीटों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और RT 372 जी की किस्म है बिंगी की खासियत है।
0: तिल की जो दूसरी किस्म RT 372 है, यह भी किस्म कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा वर्ष 2019 में अनुशंसित की गई है,
1: जी
0: जिसके बीज चमकीले सफेद होते हैं जिनमें तेल की मात्रा 48% होती है।
1: जी बिल्कुल,
0: यह किस्म 6 से 10 क्विंटल औसत उपज के साथ 85 से 87 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में बीमारियों के प्रति अधिक सहनशीलता देखी गई है।
1: चंद्रशेखर जी आ तो बात रही बीज और किस्म के बारे में, अपने आ बात तो अपना किसान भाई लोग भी जाने हैं कि बिना बीज उपचार करे कोई भी फसल की बीजांत अब आप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना बीज उपचारित करे अगर आप कोई फसल की बीजांत करांगे ना, भूमि जनित जगह रोग है या फिर बीज जनित जगह रोग है बे लागने की ज्यादा संभावना रहे, तो बीज उपचार के लिए आपने जो किसान भाई लोग अपन की करना है।
0: किसान भाइयों, बीजोपचार तिल की सफल खेती के महत्वपूर्ण घटक है।
1: जी बिल्कुल,
0: बीज को कार्बोडेंजियम से 2 ग्राम अथवा थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए,
1: जी
0: जिससे बीज जनित रोगों से बचाव होता है। जैविक विकल्प के रूप में ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग लाभकारी होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: उर्वरक प्रबंधन में संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। खेत की तैयारी के समय 8 से 10 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें। सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा देने से उत्पादन में वृद्धि होती है।
1: जी
0: तिल की बुवाई के समय 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय प्रयोग करें तथा 10 किलोग्राम नाइट्रोजन

0: प्रति हेक्टेयर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में प्रयोग करें।
1: जी बिल्कुल,
0: मृदा परीक्षण के आधार पर पोटास, सल्फर व जिंक जैसे पोषक तत्वों का भी प्रयोग लाभकारी पाया गया है।
1: जी आ भी बात छानी है डॉक्टर साहब, अपने थे भी आवाज जानो और आपने जो किसान भाई लोग है वे भी बात न जाने के फसल का माँ जे बिन बुलाए मेहमान ना आवे तो आ तो कदी हो कोस के नहीं, क्योंकि खरपतवार जगह है बे पैदा हो ही हुए तो इनके लिए आपने के करना है। आपने जो किसान भाई लोग है बे खरपतवार जगह है के तरीके से नियंत्रित कर सके बिन बारे में भी थे जानकारी दियो।
0: किसान भाइयों, तिल की फसल प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से अधिक प्रभावित होती है,
1: जी बिल्कुल,
0: इसलिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल,
0: आवश्यकता अनुसार बुवाई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें तथा 30 से 35 दिन बाद आवश्यकता हो तो दूसरी निराई गुड़ाई करें।
1: जी
0: खरपतवार नियंत्रण से फसल की अच्छी वृद्धि होती है और उत्पादन भी बढ़ता है।
1: और सिंचाई की व्यवस्था जिकी है तिल की फसल के लिए कितनी राखनी है डॉक्टर साहब?
0: सिंचाई की दृष्टि से तिल अपेक्षाकृत कम पानी वाली फसल है,
1: जी
0: फिर भी फूल आने एवं

0: तो आ तो कदी हो कोस कहनी, क्योंकि खरपतवार जका है बे पैदा हो ही हुए, तो इंगे लिए आपने के करनो है, आपने जो किसान भाई लोग है बे खरपतवार जका है के तरीके से नियंत्रित कर सके, बिंग बारे में भी थे जानकारी दियो।
1: किसान भाइयों, तिल की फसल प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से अधिक प्रभावित होती है,
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल,
1: आवश्यकता अनुसार बुवाई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें तथा 30 से 35 दिन बाद आवश्यकता हो तो दूसरी निराई गुड़ाई करें।
0: जी
1: खरपतवार नियंत्रण से फसल की अच्छी वृद्धि होती है और उत्पादन भी बढ़ता है।
0: और सिंचाई की व्यवस्था जिकी है बात तिल की फसल के लिए कितनी ग्राहकनी है डॉक्टर साहब?
1: सिंचाई की दृष्टि से तिल अपेक्षाकृत कम पानी वाली फसल है,
0: जी
1: फिर भी फूल आने एवं फलियां बनने की अवस्था पर नमी का विशेष ध्यान रखें। पानी अधिक देने से जड़ गलन या जड़ सड़न एवं अन्य रोगों की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाइयों, फसल में तना एवं जड़ गलन, पत्ती धब्बा, फैलोडी रोगों का प्रकोप हो सकता है।
0: जी
1: इसके नियंत्रण हेतु समय पर बीजोपचार, फसल चक्र अपनाना तथा कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: कीटों में पत्ती लपेटक एवं फल छेदक की निगरानी अत्यंत आवश्यक है।
0: जी
1: जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें तथा फलियां पककर सूखने लगें, तब फसल की कटाई करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: कटाई में देरी होने पर दाने झड़ने की संभावना रहती है।
0: और आखिर में डॉक्टर साहब, किसान भैया ने संदेश के रूप में थे के जानकारी के बात बताना चाहो?
1: अंत में मैं किसान भाइयों से यह कहना चाहूंगा
0: जी
1: कि किसान भाई उन्नत किस्मों, संतुलित उर्वरकों का उपयोग, समय पर बुवाई एवं वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर तिल की खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी, और इन त्रिया से अपना जो किसान भाई लोग है बे आम बातों को ध्यान रख के अगर तिल की बीजांत करेगा तो ज़्यादा फायदा हो सी, ज़्यादा मुनाफा हो सी, ज़्यादा फलत हो सी। और इतनी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, और थे हमारे स्टूडियो में आया इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद साहब।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल सर, थाने भेंट वार्ता सुनाई तिल की उन्नत खेती के बारे में और वार्ताकार रहा अपने डॉक्टर चंद्र शेखर जी। तो अन्य देवा मोकड़ सारो धन्यवाद और अंगी बात की आम बताई भी पर आपने जो किसान भाई लोग है वे जरूर अमल करेगा। पना पा एक नाटक सुना राजस्थानी पग फेरो जका का लेखक है बीरू राम चावरिया और प्रस्तुत करता जका है बी है राजेश चड्डा।

0: सुनो काई
1: अंबे सुनो
0: के सुनो एक तो आ बगुड़े री चिंता हर ऊपर सु कर रो खोरस मने तो रातों नींद ही को आवे ने नींद सो सो चर दुबली दुखी हो रही हूं मैं तो
1: चिंता तो बावड़ी मने ही घणी है बीए करन रे पछे 2 साल हो गया घरे बैठे है हाल तानी ना तो नौकरी मिली और ना ही रिश्तो होयो
0: राम जाने इरे कर में आके काई पत्थर अड़ रही हो जिके जिगे जावा भी जिगे ना उजर रिश्ते री कोई हामी नहीं भरे रिश्ते उजे तो ब्याह आज मांड लिया
1: सोचो तो काई हो और उन काई लाग रहे है 4 बीघा जमीन रो टुकड़ो हो उनने ये डे लगा दीनी हो अफसर बनसी रिपिया से खेल स्या और बीनणी बनी लिखी ला स्या के सपना देखिया से दरा रह गया
0: बनाई लिखाई तो कराणो देखो शानो आपनो फरज हो वो आपा पूरो कर दिनो पण ब्याह खतरे बे तैयार हो रिया तो छोरी मिलनी ओ खियोरे छोरी ईरी उम्र रा छोरा तो दो दो टाबना रा बाप बन रिया है
1: अरे तो हरेक रागर इस तरी बात चला रखी है पण बटो कोई कागलर हाथ संदेश भेजे ही नहीं
0: देखो देखो जमानो किशो आयो है इन तरह लगे जना समाज जात बिरादरी रे मायने छोरियां तो रही कोनी छोरियां ने तो जाने बेमाता घड़नी छोड़ देनी घड़नी
1: रही कोनी आ बात सच्ची है।

0: लाले 20 साल में छोरियां री घनी कमी हुई है। अब ठा लागन लाग रही बात रो। अब
1: आपने तो भगोड़ो पढ़ियो लिखियो है और क्या बताई यही थोड़ी बनियोड़ी है क्या जोड़ी तो ऊपर आलो बनावे उन आपने भगोड़े खतर जोड़ी कुछ बनाइयो।
0: हाँ तो हुई सोचू बात कहीं है जे ऊपर वाले नहीं बनाई तो आपने बनानी पड़सी। आखिर कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़सी। पण बटू वो उपाय हो के सके आ बात तो आपा मिलर सोचा।
1: सोचता सोचता तो 2-3 साल निकल गया। हाल ताने तो बोरी अबरशा कोने और अगर मन ठा कोने।
0: सुन मारे भेजे माँ एक बात आई है। तू कवे तो इजमार देखा कहीं ठा भूं तो लठ लाग जे और आपनो काम बन जे।
1: एड़ी थारे दिमाग में आपे कहीं बात आ गई हो। इतना साल पहले तो वो कोई बात थे करी कोने पण चल थे जिक्रो करो तो साई कहीं बात है।
0: कल है गोरखू का को जिक्रो करा के आपने शहर माए सांची राम जी ज्योतिष विज्ञान दा जानी जान है। बे आतारी लकीरा और जलम पत्री देख बतावे के कणा कहीं होसी।
1: आपने भगुड़े जलम पत्री सही बगत घड़ी रे मुझे भी बनायोड़ी है। उना सु आपने पूछा होने सूचे सु बुझो भलो कहीं ठा काम बने जे।
0: हम बे काली शहर जार पूछा सु तू अपने बा जलम पत्री संभाल दे दी। अब आर कोई दूजो काम देखूं।
2: भाई साची बात तो है कि मिनख ने कर्मा रे मुझे भी मिले पर कर्मा में जको लिखेड़ो है
0: राम राम
2: राम राम राम राम। आओ आओ बैठो। कहीं शुभ नाम एर भाई कठे सुनो करियो।
0: हूँ तो जोरा राम गांव से आयो।
2: अच्छा आओ आओ
0: कहीं बताऊ आपने मारे तो एक दो आप खाया तगड़ी सामने आ गई।
2: अच्छा अच्छा बताओ बताओ।
0: आ लियो मारे बाग चंद्री जलम पत्री और देख कर बताओ कहीं उपाय हो सके। मारे बाग चंद्रे कर्मा माए कहीं लिखेड़ो है देख कर बताओ दान तू।
2: भाई जलम पत्री तो सही टाइम घड़ी रे मुझे भी बनवाड़ी हुई ली है नी। जे सही है तो कोई चूक नहीं हुई ली जिसी बात उसी मु बता दिस ठीक।
0: मैं तो बनाई लिखाई मोकली करा रखी है। पहली तो आ बताओ के सरकारी नौकरी रा कोई जोग है कनी लाग सीख नहीं सगली बात मानते मांडर बताओ आपने सावड़ सावड़।
2: भाई आपने के नाम बतायो तार जोरा राम जी जलम पत्री रे मुजब तो नौकरी रो कोई जोग बैठन नहीं लाग रही हो है जोरा राम जी।
0: अच्छा
2: हाँ
0: मैं तो इंगे ब्याह खातर उतावला हो रहा थोड़ा सो देख कर बताओ दान बो कदोसी।
2: भाई आ एक बात था ने हूँ बता दियो छोरे रे रिश्ते रा जोग बन लाग जाए कुनी छोरी आलो बेगोई सिर बेराजी सी।
0: मारो तो उड़ियो थुड़ियो सो लाग गयो थे कहो नौकरी री उम्मीद कम है।
2: भाई
0: खैर छोरी खातर कुनी हमी भर ले के मेद्या तो अच्छी बात है।
2: हाँ नहीं
0: बेगा सा ब्याह मांडर बीनी ने घर लिया।
2: भाई देखो आपने कि नाम बतायो
0: जोरा
2: राम जी बाग आपो आप रही हुए अर देखो बखत सू पहली अर बागा सू ज्यादा कदी नहीं मिले। छोरे रे बागा में बनाई तो लिखेड़ी है पर बाकी ना घर खाली है।
0: ठीक है सा रिश्तेरी उम्मीद तो रखा हो जे कठी करम हीन रो ब्याह हो तो ब्याह मांड दिया। आप रो कमावे खावे मारी चिंता तो कम से कम दूर हो जाती।
2: जोरा राम जी आ जिम्मेवारी तो जानी निभावे अतनी निभानी पड़सी। ओ तो समाज में रा डांडो बनड़ो है देर सवे रुजे एक दूजी बात है नहीं।
0: ते बहुत अच्छी बात बताई माने माने आगू ने रो राह दिखायो धनबाद थाने अब चलूं सा।
2: हाँ ठीक है
0: जय राम जी।
2: जय राम जी।

0: सर।
1: अंबे
0: आपने भाकुड़े रे बागन रे बारे में काई बतायो पंडित जी थाने? बन्या जलमपत्री तो दिखाई काई थे? नौकरी रे ब्याह में कितरो वक्त और लागसी बिंगे?
1: नौकरी वाली जिज्ञा तो बेली बताई है, पण रिश्तो बेगोई ओंडी बात कही है। मने तो हैरानी होवे, काई ठाकुर सी गड़ी नो जलम है फूटेड़ा भागारो।
0: ना ना ना, ए तो माडो ना बोललो। हां सचने रिश्ते री बात थे कहीं चली, एक बात याद आई, इनरे मामे रो फोन आयो कल के वे आ 5-6 दिन पछे रिश्ते खतर बटाव ले रान लाग रिया है। बता वे छोरी बने लिखी यार साथ है, इन तरह री बात के वे आ कि ये रिश्ते न तो पक्को ही समझो।
1: बटी एक बात तो सांची राम जी री सांची होती दिस है, बात माए दम तो है। आप के चूकणो कोनी, बात पक्की करर, बस ब्याह मांडी देसियां।
0: ब्याह खातर रिपिया चाहिए, शनो रिपिया आओ जुगाड़ अपने करनो पड़सी। जिम्मी जी क्या तो पहले से ये डे लगा बैठे आप?
1: अरे बटाऊ तो आन दे, विनायक जी महाराज से काम सिद्ध करसी। ब्याह माए रिपिया खातर, अरे किणी न किणी माए तो राम बड़सी, एक नहीं बड़लो।
0: अपार तो हालत आ है, घर माए दो चुनरी रोटी रो जुगाड़ो खोरियो है। आपा चिंता माए सूख लकड़ी हो रिया दोनों जन।
1: केठा कल है बटाऊ आवना है, ब्यारो कह दे हूँ एक गांव माए जा रहा हूँ, दाने रिपिया रो सवाल गलन खातर आपने ले डबी ने।
2: राम राम बनी जी, राम राम।
1: राम राम, राम राम।
2: सुनाओ घरे से तगड़ा है बने जी?
1: अम्बे सगला ठीक ठाक है। आज तो माने थारे आवन दी पक्की अड़ी की सा।
2: हेलो बने जी, ए है चांद राम जी, जिनारो सागे आपना नुओ सरबंध जोड़नो है, आपरो सगो बनाने का तले वने।
1: अच्छा तो इनारी लड़की है कहीं आपने भागचंद का निकरे बा? छोरी तो की बनी लिखी हो सी, जे नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो स्वाभाविक ही पूछो है।
3: छोरी घनी तो कोनी पण बारा जमात भणेड़ी है सा, घर रे काम कारज माए तो घनी जानीकार है। मैं तो मारे कानी सु अच्छा संस्कार दीना है, बाकी तो काई केस का उनरा भाग उनरे साथ है सा।
2: छोरी गुणीवान है, ए कमावनी घनी है, अरे ई घर रे लायक है बने जी। माने तो ओ रिश्तो सही बैठ तो लागे, आगे आंगो तिलोद।
1: ताने सु की ठीक लागे तो ना करनिया मैं कुणवा, आपनो रिश्तो पक्को थे कहूगा बिया ही कर ले सा। बस
3: एक बात म्हारी सुनो सा, जे थारी कोई मांग है तो माने पहली शू बता दियो, जो को पूरी कर सका। सागिड़े वक्त देखिया अच्छा कौन लगा नहीं, सगा प्रसंगिया भी चले। एक बात और सुनो, थे चाहो तो ब्याह अभी मांड ले सा।
2: हेलो बने जी, चट मंगनी अरे पट ब्याह, कोई देरी नहीं है, तैयार हो जाओ ब्याह मांडन खातर। अरे ए कहवे जू मांग है बा आगले ने पहले से बता दियो बने जी। हाँ
1: थे मारी मांग पूरी कर दियो ला, कहीं बहुत बड़ी है।
2: हाँ
1: हाँ सुनो, मारी मांग, मारी मांग है रिपियो और नारेल। बस माने तो गुणीवान और अच्छे घराने रो टाबर चाहिए, धन नहीं।
2: बुलाओ पंडित जी ने, निकलवाओ साओ, देरी पाछा क्या रही है, आज ही करा पीला चावल बने जी।
1: प्रेम सुख जी एक ना हो।
2: हाँ
1: थोड़ो बारे चला, थोड़ी सी बात नहीं सुनो।
2: हाँ तो सुनाओ।
1: बात असल में आ है के ब्याह खातर रिपिया कोनी, जे 4-6 महीने थमर कर ले उनता तो।
2: लो बने जी काई पाले मारेडी सी बात करो थे, हैं ब्याह पे रिपिया लाग सी हूँ देशू, और बोलो थे तो ब्याह मांडो, हूँ बाण जेशू ओले ओले आप ही ले उतर रहसू, थाने के सोचे फिर है।
1: अच्छा अरे छोरो तो जाओ, पंडित जी ने बुलार ले आओ, साथे ढोल वाले ने ले आओ, अरे गांव में लुगाइया ने गीता

0: कह दो, कह दो के भागचंद्र ब्यारा पीला चावल करना है।
1: आ बड़ी ना बात बने जी।
2: माऊ, ए माऊ।
3: क्या क्या है बेटा?
2: माऊ मेरी नौकरी लागन रो कागज मिलियो है।
3: नौकरी को?
2: हाँ, दो दिन पछे इंटरव्यू है। मैं तो बस आज सुई इंटरव्यू की तैयारी में लागू हूँ।
3: नौकरी को कागज आ गया बेटा? मेरे राम जी सुन ली, अब तू नौकरी लाग जैसी। मेरो मन कह बेटा तू नौकरी लाग जैसी।
0: अरे माँ बेटो कहीं बातां करो हो।
2: बापू मेरी नौकरी रो कागज।
0: नौकरी रो कागज?
2: हाँ,
0: आ तो हो ही नहीं सके। नौकरी तो इन रे कर्मा माए लिखेड़ी नहीं है। इननी जलम पत्री माए नौकरी रो तो खानो ही खाली है।
2: इन बात रो था तो बापू मने कोने का वो चमत्कार किया हुयो, पन सो सैकड़ा समझ लियो आ नौकरी तो मने मिलेगी। ठाने क्यों मने यहाँ विश्वास हो लाग रही है बापू।
3: हाल ताने की ठा कोने बेटा, जे सांवरी रे में रोजे तो घणो ही अच्छो। सासिला हूँ दोनों आ जोड़ सांवरी ने अरदास करूँ बाबे की धोग लगवाऊ बेटा तने।
0: आखरी पास वारे है मेरो तो, बढ़ाई लिखाई रो खर्चो, ब्याह रो खर्चो। अबे तो मेरो सांवरो पतराख दे तो ही की ठीक है, नहीं तो की हाल नहीं है मेरो की हाल।
2: नौकरी लाग्या पछे बापू वारा न्यारा कर दे छू, घर री तस्वीर बदलना खुला, बस थोड़े ही बखतरी बात है बापू, थोड़े ही बखतरी।
3: तेरे सामने है बेटा, घर माए देख ले तू, लूण मिर्च रो टोटो हो रही है बार तो सोचू पार की पड़ से। अब तो भगवान सुख रखो, परिवार ही बदल लाग रही है।
0: अब ऐसे बात छोड़ो। अरे बेटा तू यहाँ कर इंटरव्यू री तैयारी करा अच्छी सी।
2: हाँ बापू।
0: ए दूजा लोग आवे नी उना सगड़ा माए अब ले तने, मारो आशीर्वाद थरे सद है बेटा।
2: मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान मेरो काम बन जाए, आ नौकरी मने मिल जाए। हाँ मेहनत करनो मेरे सारू है बापू, इन माय मैं जम माय कमी को नहीं आन दियूं।
3: खोड़ दिया पछे से पसु ये ढे लाग गया, आ साला माय धीनो तो रही ही कोनी बेटा, रही ही कोनी। चाल है तू उधरई सांसा पड़ रही है, कितनी कब खाई गिनाऊ बेटा तने, कितनी कब खाई गिनाऊ, मेरो ही जीवड़ो जाने।
0: बस बस अब गणी गड़गड़ी ना हो, उम्मीद राख अच्छा दिन ना वेला। आपने भागुड़ेरा भाग जाग सी, वो नौकरी लाग जैसी, सहजा पके बे मीठा वे पीनी सुन सी तो कैसी, के अरे घर माए तो की कोनी। चलो काम करो आप रो।
4: जोरा राम जी। ओ जोरा राम जी।
0: हो कौन है? देखूं दान बारे कुणी आयो लागे।
4: राम राम राम राम सा, सुनाओ काई हाल चाल है?
0: बस लीली छत्ती आला री कृपा है सा। आओ बिराजो, किया दर्शन दिया?
4: हूँ सुने है भागचंद ने बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, धन घड़ी धन भाग बहुत अच्छो काम हुए।
0: हाँ साची सुनिए, छोरे ने सरकारी नौकरी मिल गई और साथ अच्छी जिग्या मिली है तमास तरी दया से। ब्याह हो गयो, नौकरी मिल गई, अब तो बस बात जमीनड़ी जे।
4: थारी सगड़ी बात जान गयो, आयो ही इन खातर हूँ। मारला टिंगरिया तो न्यारा न्यारा हो गया, बात थारली जमी मन्ने सौंप दी। मारो तो खेती पाती हुए कोनी, अब मैं थाने पाछी सौंपण आयो, थे बीजो बाओ एर खाओ।
0: आ तो साची बात है धनराज जी, बंदेड़ी मुठी लाग गी और खुलेड़ी खाग गी। जमी तो पाछी दे दोगा भलाई, पण रिपिया
4: रिपियांगी अब के चिंता है, ओला ओला देवता रही हो। खेती करो डटर, की खेती शू और की नौकरी शू, आपी आप उतर जी सी, आशू ही थारी जमी संभालो।
0: ठीक है सा, हूँ आज ही खेत में हल जोड़ दियूं, मारे पर आप बहुत बड़ी कृपा करिए थे, हूँ थारो हाथ जोड़ धन्यवाद करूँ सा।
4: बड़ेड़ी बेल हरी होनी शुरू होगी, राम जी थाने अच्छो दिन दिए, पन ठानी ओ किंडे प्रताप से होने लाग रहे। अच्छा अब मैं चलू, राम राम
0: राम राम राम राम। सुने के ए बागलेगी माँ?
3: के कह वे आ?
0: एक खुशखबरी है।
3: खुशखबरी तो थे मन लागे कह वे आ के धनराज जी अपने जमी पाछी सौंप देने। बात थारे मैं सारी सुन ली, पर शानो रिपिया कठों दे वाला, अब बार तो घर में साची पूछो तो दिलो ही कोनी दिलो ही।
0: आ बात मारी उनारे साथ है होगी, रिपिया होया होया देना है। हूँ आज ही खेत जार हल जोड़ू, की हरियो निरवाली बीजा पशु सफाई थक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल सा थाना नाटक सुनायो पग फेरो इंगा लेखक हा बीरूराम चावरिया और प्रस्तुत करता जगह बे हा राजेश चड्ढा। इंगमा भाग लेवनिया जगह कलाकार हा बे हा प्रमोद कुमार शर्मा, सरला पारिक, राजेश चड्ढा, राजकुमार गोस्वामी, बीरूराम चावरिया, रोहितास शर्मा, भागीरथ रिवार्ड। बिल्कुल वो नाटक जो को हो बड़ो संदेशात्मक नाटक हो और इंगमा के एक जकी छोरियाँ है बे बंगो जो को पग फेरो है वो कई बार गर्गीज की दिशा है दशा ज की है बा भी बदल नख है तो इन वास्ते आप जी टाबरियाँ हैं जो कि छोरियाँ हैं ना बने बनाओ लिखाओ बने आपका पगा पर खड़ा करो सा क्योंकि छोरियाँ ज की है बे आपने आश्रय है और जितने आपने आश्रय है बीते बने पढ़ाई लिखाई ज की है बंगी चालू रखो सा बने छोटी उम्र में ब्याह जो को है वो अभी कौन करनो सा क्योंकि छोटी उम्र में जिकी काची उम्र है ना बिंगमा अगर आप ब्याह कर देशा ना तो बिंगो पाप बिंगो दोष जो को है वो आपा नहीं लग गए सा ना तो ये वास्ते उम्र जब बड़ी हो जाए तो छोरिया ने फिर ही अपने ब्याहनो चाहिए सा पर आप चलता चलता ये गीत का दो एक मुखड़ा सुन लिया लो थे भी सुनो सा।

बिल्कुल सा, आज को कार्यक्रम थाने किसोक लाग्यो, थारा कागजा छू और थारा संदेशा छू और थारा मेल छू पतो लागसी। और अब कार्यक्रम को टेम इतो ही है अपना कन का थारा छू लू अग्ञा भाई रामेश्वर ने दो

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कभी हां कभी ना इस फिल्म के गीत के साथ। इसे स्वर दिया है कुमार शानू ने।

26.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सनम फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस फिल्मी नगमे के साथ। इसे स्वर दिया है साधना सरगम और कुमार शानू ने। इसके गीतकार हैं समीर और संगीत आनंद मिलिंद का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सनम फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार शानू को।

श्रोताओ, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सनम फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने पंकज उदास की आवाज में गया ये गीत।

एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम आप इस वक्त आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सनम फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुने साधना सरगम की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के पश्चात आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में सचिन खलप्पा शिरोल और रुद्र किरण निम्हान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन जीत दर्ज की। शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, सात्विक चिराग और ध्रुव तनिषा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां भारतीय अंडर 17 कुश्ती के खिलाड़ियों ने आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल ओबैद को 11-4 से हराया। वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने कोरिया के शियोक मोसिम को 8-0 से मात दी। हाल ही में अंडर 23 कैटेगरी में भारतीय टीम चैंपियन बनकर उभरी और भारत ने कुल इस प्रतियोगिता में अंडर 23 में 27 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया था। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए अंडर 17 कैटेगरी में आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुश्ती प्रशंसकों को इस प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद होगी। इसे चलते हैं सीधे चेस के मैदान की ओर, जहां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के राउंड 3 में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में भारतीय स्टार खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्लासिकल चेस में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। प्रज्ञानंदा ने धीरे धीरे एक लंबे गेम में कार्लसन को पीछे छोड़ दिया और ज्यादातर समय तक कंट्रोल में दिखे। हालांकि समय की भारी कमी के कारण मैच का रुख बदल गया और कार्लसन ने इसका फायदा उठाते हुए बढ़त हासिल कर ली। कुछ देर बाद नॉर्वे के स्टार ने दबाव में आकर एक बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और टूर्नामेंट लीडर अली रेजा फिरोजा ने कड़े क्लासिकल मुकाबले में ड्रॉ खेला। फिरोजा ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की। विंसेंट किमर और वेस्ली सो के बीच बचा हुआ क्लासिकल गेम भी एक संतुलित संघर्ष के बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ। वेस्ली सो ने अतिरिक्त पॉइंट्स इकट्ठा करके आर्मागेडन गेम को अपने नाम कर लिया। तीसरे राउंड के बाद फिरोजा एक और शानदार प्रदर्शन के बाद तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। नॉर्वे चेस विमेंस में एक बार फिर करीबी मुकाबले देखने को मिले। 3 क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए और फिर मैच के नतीजे का फैसला आर्मागेडन से हुआ। मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजून और झू जिनर का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। झू जिनर ने एक समय अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन वह इसे जीत में नहीं बदल पाई। झू ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। एना मुजी चूक और कोनेरू हम्पी ने भी एक संतुलित संघर्ष के बाद अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म किया। मुजी चूक ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। क्लासिकल चेस में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर रही और अंत में खेल ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बाद आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर खेला गया, जहां दिव्या ने आर्मागेडन गेम जीत कर अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। तीसरे राउंड के बाद दिव्या और जू जिनर ने आर्मागेडन में अहम जीत हासिल करके अंतर को थोड़ा कम किया। इसके बावजूद असुबाएवा नॉर्वे चेस विमेंस में अभी भी बढ़त बनाए हुए है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
0: शतरंज की बाजियों से रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनीषा क्रस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते भारतीय खिलाड़ियों पर आज की रिपोर्ट।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अलग अलग अंदाज में जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि एचएस प्रणॉय कई गलतियों की वजह से बाहर हो गए। सिंधु ने 37 मिनट के भीतर जापान की रिको गुंजी को 21-9, 21-12 से हराया। अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आन से यंग से होगा। लक्ष्य ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि दूसरे वरीय कुनलावुत ने महज 2 अंक के बाद पीठ की समस्या के कारण रिटायर होने का फैसला किया। अब

0: 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य का सामना जापान के कोकी वातानाबे से होगा। पुरुष डबल्स में चौथी वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने एक घंटे तक चले कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे के ली जी हुई और यांग पोसुआन को 21-15, 11-21, 21-18 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। अब उनका सामना मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोन ताई से होगा। डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी अंतिम आठ में पहुंच गए, जिन्होंने जापान की युता वातानाबे और माया तागुची को 8-21, 21-17, 21-16 से मात दी। अब उनका सामना कोरिया के किम जाय हियोन जांग और हाजियोंग तथा मलेशिया के चीन तांग जिए और तोई वेई के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। प्रणोय आखिरी गेम में बुरी तरह पिछड़ गए और 61 मिनट तक चले मैच में घरेलू दावेदार लोकिन यू से 18-21, 21-16, 15-21 से हार गए। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: अब रुख करते हैं पैरा एथलेटिक्स की ओर। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने कल पुरुषों की जैवलिन F64 कैटेगरी में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। बेंगलुरु में एक शानदार थ्रो के साथ अंतिल ने पैरा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा।
2: सुमित अंतिल ने 74.82 मीटर का थ्रो करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 73.29 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसे उन्होंने 2022 के हांगचो एशियाई पैरा गेम्स में बनाया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अंतिल ने साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में अपना खिताब बरकरार रखा। हरियाणा की ओर से सुमित ने 74.82 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने रजत और राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ऊंची कूद के T64 कैटेगरी में पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने 2 मीटर की ऊंचाई पार करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि वरुण सिंह भाटी ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार कर सिल्वर मेडल हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 57.84 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर T47 कैटेगरी में महाराष्ट्र के दिलीप गावित ने 47.64 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में हरियाणा के रिंकू ने अजीत सिंह और रवि कुमार को पछाड़ा। फील्ड स्पर्धाओं में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। हनी ने 60.70 मीटर का थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता, जबकि प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 में 34.04 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में गुजरात की निमिषा चक्कुंगल ने लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावना बेन अजब चौधरी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब 37.01 मीटर के साथ अपने नाम किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: रांची में हुए एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कई रिकॉर्ड बने और इस प्रतियोगिता में भी एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इधर रुख कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर ने जुआन मैनुअल सेरुन डोले को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने थॉमस मचाक को हराया। महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमोवा, आर्याना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। वहीं कल 3 बार के चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स के 3rd राउंड में पहुंच गए हैं। कर लेते हैं क्रिकेट की ओर। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से मात देकर क्वालिफायर 2 में जगह पक्की कर ली।
3: कल महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की। वैभव ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही वैभव ने क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा

0: 68 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
1: स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड अगेन, ही इज पुटिंग ऑन अ शो दिस यंग मैन वैभव सूर्यवंशी। नाउ ओवर थर्ड, पुश द रोप्स बैक, slammed again. He is toying with one of the greats of our game at the moment.
0: वैभव 15 मैचों में 65 छक्कों के साथ 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं।
1: What an innings! What a player! Wonder kid!
0: इसके बाद कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ध्रुव ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। इसके अलावा ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और नीतीश रेड्डी ने एक एक विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। हैदराबाद को दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेट के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी, लेकिन ईशान 11 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सलिल अरोड़ा ने नीतीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। नीतीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलिल ने 35 रन की पारी खेली। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यशराज ने 1 विकेट अपने नाम किया। वैभव को तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद वैभव ने कहा कि मैं जब तक क्रीज पर रहूंगा इंटेंट दिखता रहेगा।
2: सभी कोचेज ने बोला था कि जो प्रैक्टिस में करते आ रहा है वही इस गेम में करना है, एंजॉय करना है और प्रेशर नहीं लेना इस गेम का।
0: सचिन तेंदुलकर की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वैभव ने कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट से सराहना मिलना मेरे लिए गर्व की बात है।
2: काफी अच्छा लगता है सर, मोटिवेशन मिलता है आपको और सब जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है तो हमारे लिए काफी बड़ी बात है कि उनके ऐसे लेजेंड ने ट्वीट किया है, तो ऑफकोर्स खुद में प्राउड की बात है।
0: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का मजबूत बल्लेबाजी क्रम किस प्रकार गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना करता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो वैभव का सूर्योदय हो चुका है और उनके प्रदर्शन से पूरा क्रिकेट जगत जगमगाया हुआ है। और अब रुख कर लेते हैं महिला क्रिकेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार आज रात 11 बजे कैम्सफोर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 मई को, वहीं तीसरा मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाली महिला T20 विश्व कप में अंपायरिंग के लिए ICC ने 18 सदस्यीय महिला अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें मैच रेफरी GS लक्ष्मी सहित 4 भारतीय अंपायर शामिल हैं। फुटबॉल की भारतीय अंडर-20 फुटबॉल पुरुष टीम को AFC अंडर-20 एशियाई कप चीन 2027 क्वालिफायर्स के लिए ग्रुप बी में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। ये क्वालिफायर्स 25 अगस्त से 6 सितंबर तक ताशकंद में होंगे। और श्रोताओं, आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और 2 भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर-17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की

0: विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत

0: 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।

0: अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
1: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
0: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
1: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
0: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
2: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
2: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। श्रोताओ, लीजिए अब हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय

0: जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खास तौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे, और जो लोग बाहर काम करते हैं, खास तौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज़्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए?
0: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए, और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
0: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी लग रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ओआरएस का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ओआरएस का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें, जिससे कि आपको

0: रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं। क्या ये शरीर के लिहाज से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाएं, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आए, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खास तौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं, तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन

0: सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
1: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं। वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है, गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
0: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
1: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें। तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं। तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
0: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. Insights.
3: This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
4: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
5: Thank you.
4: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
6: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam. This process normally takes 3 to 6 months.
4: The Assam Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code Bill yesterday, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such a legislation after Uttarakhand and Gujarat. Could you please

0: थे एक नाटक निर्णय। निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है, और वो भी सुबह से पहले। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी हैं। मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ की बेटी। आलेख श्री कृष्ण कुमार टिक्कू, निर्देशक श्री मदन शर्मा। तो सुनिए नाटक मेवाड़ की बेटी।
1: जिसका चित्र इतना सुंदर हो वो स्वयं बल्ला कितना सुंदर होगा।
2: माँ
1: दुष्ट कंकी,
2: तूने तो मुझे डरा ही दिया था।
1: मैं तो समझी थी कि माँ आ गई है ना, लेकिन

0: माँ आ भी जाए तो क्या है, अपने मंगेतर का ही तो चित्र देख रही थी महारानी जी। और फिर अब तो विवाह में भी 4 ही दिन बचे हैं।
1: लेकिन हंसा, तू अभी से मुझे क्यों महारानी कह रही है?
0: क्यों ना कहूँ? याद है जब जयपुर के राज पुरोहित ने आपकी गोद भरी थी तब क्या कहा था?
1: क्यों कहा था?
0: आयुष्मान भव, राजकुमारी जी आपका विवाह जयपुर कुल श्रेष्ठ महाराज मानसिंह जी के साथ 2 माह बाद होगा, किंतु आप इसी क्षण से स्वयं को जयपुर की महारानी समझे। और राणा जी अब ये मेवाड़ की राजकुमारी नहीं, जयपुर की महारानी के रूप में आपके पास हमारी अमानत है। 2 माह बाद हम जयपुर नरेश की बारात लेकर आपसे अपनी अमानत लेने आएंगे।
2: अरे वाह हंसा वाह, तुझे तो कोई अभिनेत्री होना चाहिए था।
0: हाँ अभिनेत्री ही बन जाऊंगी। और जयपुर वाले अपनी महारानी को ले जाएंगे तो हंसा का क्या काम रह जाएगा यहाँ पर?
2: हंसा
0: हाँ अभिनय करके ही पेट पालना पड़ेगा मुझे अब।
2: तू कहे तो तेरे लिए भी कोई जयपुर वाला दूल्हा ही ढूंढ दूं, फिर सदा ही मेरे साथ रहना।
0: क्यों जी, दूल्हा मिल जाएगा तो फिर हम आपके साथ क्यों रहेंगे भला? हम अपने दूल्हे के साथ नहीं रहेंगे क्या?

0: हम हाजिर हो सकते हैं महारानी जी?
1: भला मेवाड़ नरेश को भी अपने महलों में आने के लिए किसी की आज्ञा लेनी पड़ती है?
0: मेवाड़ नरेश तो हम हैं ही, लेकिन अपनी रानी के महलों में तो हम सिर्फ एक प्रेमी पुजारी ही हैं। अब देवी की आज्ञा के बिना भला पुजारी कैसे अंदर आ सकता है?
1: लगता है आज आप ठिठोली करने पधारे हैं यहाँ। किंतु हमें अभी संध्या पूजन को जाना है भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर में।
0: वो तो हम आपके हाथ में पूजा का थाल देखकर ही समझ गए थे रानी जी। हम तो ये कहने आए थे कि आज हमने कृष्णा को देखा तो दंग रह गए। आपने तो हल्दी चढ़ा चढ़ाकर हमारी बेटी को साक्षात वसंत ऋतु सा कर दिया है।
1: सच कह रहे हैं आप, कुंदन सी धमकने लगी है हमारी कृष्णा। जयपुर नरेश उसे देखेंगे तो स्वयं अपने भाग्य पर आश्चर्य करेंगे। राणा जी, दिन में 4 बार उसकी नजर उतारती हूँ मैं।
0: अच्छा, एक बात कहें हम आपसे?
1: कहिए ना।
0: कृष्णा को देखकर हमें वो दिन याद आ गया जब हमने पहली बार अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया था। बिल्कुल आप पर गई है आपकी बेटी।
1: फिर शुरू कर दी आपने ठिठोली।
0: अच्छा, नहीं करते ठिठोली।
2: हुजूर, महामंत्री जी पधारे हैं, कहलवाया है इसी समय हुजूर के दर्शन करना आवश्यक है।
1: महामंत्री जी इस समय?
0: विवाह की तैयारी में ही कुछ बात करनी होगी, अब 4 ही तो दिन शेष बचे हैं। कल से तो अतिथियों का आना भी शुरू हो जाएगा। सेवक।
2: आज्ञा महाराज।
0: तुम महामंत्री जी को भीतर भेज दो।
2: जो आज्ञा।
0: आप भी कुछ देर यहीं रुक जाइए महारानी जी, संभव है आपसे भी कोई परामर्श लेना हो।
3: मेवाड़ शिरोमणि की जय हो।
0: आइए महामंत्री।
3: प्रणाम स्वीकार करें महारानी जी।
1: आसन ग्रहण कीजिए महामंत्री जी।
3: आप कदाचित मंदिर पधार रही हैं।
1: हाँ, किंतु अभी समय है, आप चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं।
3: जो आज्ञा। राणा जी, मैं
0: क्या बात है अजीत, तुम कुछ घबराए से हो?
3: अन्नदाता, बड़ा अशुभ समाचार है।
0: क्या? शीघ्र कहो अजीत, क्या हुआ है?
3: अन्नदाता, जयपुर नरेश

0: जयपुर नरेश
1: क्या हुआ है जयपुर नरेश को?
0: अन्नदाता जयपुर नरेश नहीं रहे।
2: ऐसा नहीं हो सकता।
1: ये तुम क्या कह रहे हो आजी?
2: क्या
1: क्या मानसी जी?
0: अन्नदाता अभी अभी जयपुर से दूत आया है। कुछ दिनों से जयपुर नरेश बीमार थे और कल रात अचानक ही
2: ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? ये दुख मेरी कृष्णा कैसे सह पाएगी? अब क्या होगा?
1: स्वयं को संभालिए रानी जी।
2: कैसे संभालो? घर में हल्दी चढ़ी बेटी बैठी 4 दिन बाद दुभा कर लग्न है। ऐसे समय में ये बच बात मैं
1: ये समय रोने का नहीं महारानी, ये समय है विचार करने का। सेवक ये नगाड़े और शहनाइयां बंद करवा दो। महलों पर सजावट की सारी रोशनियां बुझवा दो। जनाने महलों में कहलवा दो कि ये गीत नृत्य सब बंद कर दिए जाए। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया अजीत।
0: आपका दुख मैं समझ रहा हूँ राणा जी। ये आप ही का कलेजा है जो ये वज्रपात झेल कर भी आप अपना धैर्य बनाए हुए हैं।
1: और हम कर भी क्या सकते हैं?
2: किंतु राणा जी एक और कठिन समस्या है।
1: एक नहीं, अब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं हमारे सामने।
2: आप समझे नहीं, बेटी को हल्दी चढ़ चुकी है। अब उसे घर में बिठाए नहीं रखा जा सकता। विवाह का जो मुहूर्त है उस पर उसका विवाह करना ही होगा।
1: क्या कह रही हैं आप?
2: आपके कुल की यही रीत है राणा जी। एक बार हल्दी चढ़ जाने पर लड़की का विवाह निश्चित मुहूर्त पर करना होता है। हल्दी चढ़ी बेटी पिता के घर नहीं रह सकती।
1: किंतु रानी जी लग्न में तो केवल 4 दिन शेष है। भला इतने कम समय में हम राजकुमारी के लिए योग्य वर कहां से लाएंगे?
0: अन्नदाता आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करूं।
1: आप भी कुछ सलाह दीजिए मंत्री जी। हमारी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करें।
0: अन्नदाता राजकुमारी जी के लिए जयपुर के अलावा जोधपुर नरेश का भी तो प्रस्ताव आया था।
1: हाँ, राजा मकरंद सिंह
0: जी।
1: हाँ हाँ, उनका भी प्रस्ताव आया था। बल्कि वे तो इस संबंध के लिए बहुत उत्सुक भी थे।
0: और जयपुर नरेश का प्रस्ताव मिलने के बाद आपने अभी तक जोधपुर नरेश को हाँ या नहीं का कोई भी जवाब नहीं दिया।
1: हाँ
0: अन्नदाता, इस समय वही आपकी समस्या का समाधान है।
1: आपका मतलब है कि?
0: हाँ मेवाड़ शिरोमणि, जयपुर के बाद जोधपुर से अच्छा कोई संबंध राजकुमारी और मेवाड़ के लिए नहीं हो सकता।
1: तुम ठीक कहते हो अजीत सिंह। आपका क्या विचार है महारानी जी?
2: हाँ, यही उचित होगा। आपने तो हमें उबार लिया मंत्री जी।
1: महामंत्री जी, हमारा पत्र लेकर दूत को जोधपुर रवाना करो। हम राजा मकरंद सिंह को बारात लेकर निश्चित मुहूर्त पर पहुंचने का निमंत्रण भेजेंगे। राजाओं की तैयारी में समय नहीं लगता। दूत से कहना रातों रात हमारा पत्र जोधपुर नरेश तक पहुंचाए और उनका जवाब लेकर कल तक यहां वापस लौटे।
0: जो आज्ञा अन्नदाता, आप पत्र लिखिए, मैं सब प्रबंध करके लौटता हूं।

0: सुनकर कि हम स्वयं नगर की सीमा पर उनकी बारात के स्वागत को आए हैं।
1: ऐसा करके आपने उनका सम्मान बढ़ाया है महाराज, वे निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे।
0: लगता है बारात आ गई है अजी।
1: जी हाँ महाराज, वो उधर घुड़सवार नजर आने लगे हैं महाराज।
0: स्वागत की तैयारी तो सब हो गई है ना?
1: आप निश्चिंत रहिए अन्नदाता।
0: ये तो बारात नहीं कोई सेना नजर आती है अजीत। भला जोधपुर नरेश
1: ये मुझे भ्रम हो रहा है या
0: क्यों? क्या हुआ अजीत?
1: इन सैनिकों के सिर पर जोधपुरी साफे भी नहीं है राणा जी। ये तो
0: हमने ध्यान ही नहीं दिया था अजीत।
1: जी महाराज,
0: ये साफे तो जयपुर रियासत की पहचान है।
1: ये निश्चय ही जयपुर रियासत की सेना है राणा जी।
0: जयपुर की सेना? लेकिन क्यों?
1: वो देखिए एक हाथी पर जयपुर राजवंश का ध्वज भी लगा है राणा जी। इसका मतलब है कि स्वर्गीय मान सिंह जी के छोटे भाई और अब जयपुर नरेश राजा मुकुल सिंह जी स्वयं भी सेना के साथ तैयार रहे हैं।
0: लेकिन उन्हें तो हमने निमंत्रण भी नहीं भेजा था।
1: कुछ घुड़सवार उधर भी आ रहे हैं राणा जी, और सबसे आगे स्वयं जयपुर के दीवान जी है।
0: जाने क्या इच्छा है भगवान एकलिंग नाथ की। आप आगे जाकर दीवान जी का स्वागत कीजिए और उन्हें यहीं हमारे खेमे में ले आइए।
1: जो आज्ञा राणा जी।
0: और जब भी जोधपुर वालों की बारात पहुंचे आप उनका स्वागत करें, उनके यहीं विश्राम का प्रबंध करें और हमें तुरंत सूचना दें।
1: जो आज्ञा अन्नदाता।
2: जयपुर के दीवान का प्रणाम स्वीकार करें मेवाड़।
0: पधारिए, मेवाड़ में आपका स्वागत है।
2: मैं जयपुर महाराज का एक आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ राणा जी।
0: आपको जो भी कहना हो शीघ्र कहिए दीवान जी। जोधपुर नरेश की बारात भी किसी भी क्षण आ सकती है।
2: उस बारात को वापस लौटा दीजिए मेवाड़ नरेश।
0: क्या क्या कह रहे हैं आप?
2: जयपुर नरेश का यही संदेश है कि आप जोधपुर वालों की बारात वापस लौटा दीजिए।
0: बारात वापस लौटा दें? हमसे यह कहने का साहस कैसे हुआ आपका? आपके राजा को हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है?
2: ये अधिकार आप ही ने जयपुर नरेश को दिया है हुकुम।
0: हमने अधिकार दिया है? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं दीवान जी।
2: आप अगर क्रोध छोड़कर शांति से मेरी बात सुने तो सब समझ जाएंगे। फिर आप स्वयं ही फैसला कीजिएगा कि आपको जोधपुर की बारात लौटानी चाहिए या नहीं।
0: लेकिन आप कुछ कहिए तो सही।
2: अर्ज करता हूं, राजकुमारी कृष्णा का संबंध आपने जयपुर नरेश मानसिंह जी से किया। हमारे राजपुरोहित ने स्वयं आकर उनकी गोद भरी और उन्हें जयपुर की महारानी घोषित किया। ठीक है ना राणा जी?
0: ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन मानसिंह जी के स्वर्गवास के बाद इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
2: अर्थ क्यों नहीं रह जाता राणा जी? रियासतों के विवाह संबंध व्यक्तियों के बीच नहीं, दो राजघरानों के बीच होते हैं, दो रियासतों के बीच होते हैं। राजा मानसिंह के निधन से जयपुर की राजगद्दी सूनी नहीं हो गई। आज राजा मुकुंद सिंह जयपुर नरेश हैं और अपने राजपुरोहित के वचनों के अनुसार निश्चित लग्न मुहूर्त पर जयपुर की महारानी को, जो आपके पास हमारी अमानत है, लेने आए हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं राणा जी?
0: लेकिन हमने जो जोधपुर नरेश को निमंत्रण देकर बुलावा भेजा है।
2: क्षमा चाहता हूं, ये आपकी गलती थी। हम भी जानते हैं कि हल्दी चढ़ी राजपूत कन्या पिता के घर नहीं रह सकती। हम भी क्षत्रिय हैं, इसीलिए राजा मान सिंह की मृत्यु के शोक के बावजूद सही मुहूर्त पर बारात लेकर आए हैं।
0: एकलिंगनाथ, अब क्या होगा?
2: जयपुर नरेश की बारात खाली हाथ नहीं लौटेगी। हमारी महारानी को हमारे सामने आप किसी और को सौंपें, इससे पहले मेवाड़ की धरती को अपने ही पुत्रों के खून से नहाना होगा।

0: आपकी बेटी जयपुर की इज्जत है और इसकी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा, चाहे वह किसी का भी हो। मैं अब आज्ञा चाहूंगा मेवाड़ नरेश, लग्न का समय कल रात का है, तब तक हमारी सेना आपके नगर की सीमा से बाहर यहीं रहेगी। आशा है आप मेरे निवेदन पर विचार कर कल सुबह तक हमें अपना जवाब भिजवा देंगे। जय भवानी।
1: जोधपुर की बारात आ गई है महाराज। जोधपुर की बारात आ गई है।
2: हाँ हाँ हाँ। सुनो अजीत।
1: जी महाराज।
2: तुम बारात के यही ठहरने का प्रबंध करो, कह दो नगर प्रवेश का कल सुबह से पहले अच्छा मुहूर्त नहीं है, हम महलों में जा रहे हैं, तुम वहीं आओ।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: हाँ, सुनो अजीत
1: जी। महाराज,
0: तुम बारात के यही ठहरने का प्रबंध करो। कह दो नगर प्रवेश का कल सुबह से पहले अच्छा मुहूर्त नहीं है, हम महलों में जा रहे हैं, तुम वहीं आओ।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: अब क्या होगा राणा जी? हे प्रभु, ये कैसा संकट आ पड़ा है हम पर। इधर जोधपुर की बारात तैयार खड़ी है, उधर जयपुर की सेना, अब हम क्या करें? आप ही कुछ कहिए ना मंत्री जी।
1: मैं क्या कहूँ महारानी जी, मैंने तो जोधपुर और जयपुर दोनों ही राजाओं के हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था बताई, पर दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। जोधपुर नरेश कहते हैं कि स्वयं महाराजा ने उन्हें विवाह का निमंत्रण देकर बुलाया, अब उनकी चढ़ी बारात के सामने कोई दूसरा मेवाड़ की राजकुमारी को ब्याह कर ले जाए, इससे पहले उनका हर सिपाही अपना सिर कटा देगा। वे यहां से लौटेंगे तो राजकुमारी को लेकर, अन्यथा लाशों का ढेर लग जाएगा। यही जिद जयपुर नरेश की भी है।
0: लेकिन मैं अपनी एक बेटी को दो बारातों में कैसे बांटूं? आप कुछ क्यों नहीं बोलते राणा जी? कल किसे और क्या जवाब देंगे आप?
1: जवाब? हाँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सेवक,
2: हाजिर हूँ अन्नदाता।
1: राजकुमारी को संदेश भेजो कि हम इसी समय उनसे मिलना चाहते हैं।
2: जो आ गया हूँ।
0: आप कृष्णा को बुलवा रहे हैं?
1: हाँ रानी जी, अब हमें क्या करना है इसका फैसला कृष्णा ही करेगी।
3: दाता हुकुम को प्रणाम।
1: आओ बेटी।
3: यहाँ आओ बेटी। अरे माता जी और मंत्री काका भी यही हैं। खम्मा घणी।
1: जीती रहिए राजकुमारी जी।
3: मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी?
1: बेटी, आज तुम्हें आज्ञा देने नहीं, एक गंभीर समस्या पर तुम्हारी सलाह लेने को बुलाया है। ये केवल हमारे परिवार ही नहीं, पूरे मेवाड़ और पूरी राजपूत जाति के लिए संकट की घड़ी है। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो और फिर बताओ कि हमें क्या करना है।
3: जी पिताजी।
1: सुनो बेटी, हमने जब जयपुर से आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तब ये सोचा था कि आपको तो अच्छा वर और घर मिलेगा ही, साथ ही मेवाड़ पर छाए संकट के बादल भी छट जाएंगे।
3: मेवाड़ का संकट?
1: हाँ बेटी, मुगलों से लड़ते लड़ते मेवाड़ अंदर ही अंदर इतना जर्जर हो चुका है कि हमारी पड़ोसी रियासतें भी हम पर गिद्ध दृष्टि डालने लगी थी। हमारी बची खुची सेना बहुत दिनों तक मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, किंतु यदि जयपुर जैसी ताकतवर रियासत से हमारे संबंध हो जाते तो फिर किसी का हमारी ओर आंख उठाने का साहस भी नहीं होता।
3: ये तो आपने ठीक ही विचार किया पिताजी।
1: पर ऐसा हुआ नहीं। विवाह के चार दिन पूर्व मान सिंह जी का स्वर्गवास हो गया।
3: क्या?
1: हाँ, और कुल की रीत निभाने के लिए हमें आपके विवाह का निमंत्रण जोधपुर नरेश को भिजवाना पड़ा।

0: कल तुम्हारा लग्न है और कल सुबह हमें उनमें से एक को बारात नगर में लाने को आमंत्रित करना है। हम चाहे जयपुर वालों को न्योते या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी। तीनों ही रियासतों के सैकड़ों राजपूतों की लाशों का ढेर लग जाएगा। यहां से तुम्हारी डोली जो भी ले जाएगा उसे अपनी ही कौम के खून की भरी दलदल से होकर गुजरना पड़ेगा। हजारों राजपूत बालाएं विधवा हो जाएंगी तुम्हारी मांग के सिंदूर के लिए, असंख्य बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम्हारा घर बसाने के लिए, और मेवाड़ का क्या होगा फिर?
1: नहीं नहीं पिताजी नहीं, यदि मेरे विवाह मंडप में मंगल गीतों की जगह विधवाओं का क्रंदन गूंजे, यदि मेरी डोली हजारों वीर राजपूतों की लाशों को लांग कर गुजरे, तो धिक्कार है इसी विवाह पर। सिर्फ मेरे कारण इतना विनाश? नहीं नहीं पिताजी नहीं नहीं नहीं नहीं, आप तुम्हें राजाओं से कह दीजिए कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी।
0: बेटी ये भी तो संभव नहीं है। अब हल्दी चढ़ी कन्या घर में बैठी है और दरवाजे पर बारात खड़ी हो तो विवाह नहीं टलेगा। हम कहे भी तुम्हें नहीं मानेंगे।
1: फिर क्या निर्णय लेंगे आप?
0: निर्णय हम नहीं लेंगे बेटी, निर्णय तो आप ही को लेना है। पूरी राजपूत जाति का हित अहित सोचकर निर्णय आपको लेना है। ध्यान रहे, आप हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की बेटी है, मेवाड़ की बेटी।

अब स्थिति यह है कि मेवाड़ की राजकुमारी एक है और उनसे ब्याहने को दो बाराते दरवाजे पर खड़ी हैं।

0: अरे इतनी चिंतित क्यों हो राजकुमारी?
1: हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे हंसा। अच्छा घंटे भर बाद आना।
0: क्यों आ गया?
2: हम चाहे जयपुर वालों को लूटे या जोधपुर वालों को, ये निश्चित है कि ये धरती राजपूतों के रक्त से स्नान करेगी।
3: दाता, कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा आपको।
2: निर्णय तो राजकुमारी ने ले ही लिया होगा।
4: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया, महारानी अनर्थ हो गया।
0: क्या हुआ बताना, क्या हुआ?
4: राजकुमारी
0: क्या हुआ राजकुमारी को?
4: राजकुमारी ने विष पीकर प्राण दे दिया।
2: बंद कीजिए रानी जी, आपकी बेटी है।

0: मेवाड़ की बेटी ने अपना बलिदान देकर राजपूतों के गौरवमय इतिहास को गंगा की पवित्रता दी है।
1: लेकिन मेरी बेटी
0: धैर्य रखी है रानी। अजीत सिंह,
2: आप क्या मेवाड़ रहे?
0: आप अभी जाकर जयपुर और जोधपुर नरेशों को स्वयं ये कहिए कि हमारी बेटी के विवाह मंडप में तो हम उनमें से किसी को भी नहीं बुला सकते अब, किंतु हमारी बेटी के अंतिम संस्कार में वे दोनों ही आमंत्रित हैं। जाइए जाइए, अब मेवाड़ की धरती खून से नहीं नहाएगी, नहीं नहाएगी।

0: मेवाड़ की बेटी। अभी आप श्री कृष्ण कुमार टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इसके निर्देशक थे श्री मदन शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे श्री दीपक जोशी, श्रीमती पूनम भू, श्री रमेश सनाठे, श्री अतुल्य कीर्ति व्यास, श्री राजेश चड्ढा, कुमारी करुणा कुमावत और श्रीमती ममता सुखवाल।
1: इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 और 12 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। इसमें राग जिन ज्योति में गत आप सुनेंगे आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुने समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार होंगे हिंदी और अंग्रेजी में, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई

नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में है। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।